0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इटमीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: सुना, मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं।
5: एक हफ्ता?
4: हाँ।
5: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, दो चार घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आ जाना।
4: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, दो तीन घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी।
6: अरे बाप रे।
7: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
8: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
9: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
8: तरक्की?
9: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल मोटरसाइकिल, तिकाई
8: तरक्की।
9: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
10: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
9: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
11: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
9: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
10: अब खुले में शौच नहीं।
12: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
13: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
12: किससे?
13: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

ताली ताक झुम ताक ताली ताक झुम ताक झाला आंब ताक झुग ताक ताडी गेन ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी ता आपण तारी गेट ताक झुम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी ता आपण तारी गेट झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताक झुम ताक झुम ताक झम तारी झग तारी झाले झाले कोकू

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अच्छा ना।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन एप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुठ स्वच्छता की

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: सुना, मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं।
5: एक हफ्ता?
4: हाँ।
5: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में, ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, 2-4 घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आ जाना।
4: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, 2-3 घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी। अरे बाप रे।
6: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता दूंगा।
7: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
8: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
8: देखो मुन्ना, पहले गाँव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका है
7: तरक्की।
8: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
9: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
8: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
10: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
8: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
7: अपनाए तरक्की की सोच, नहीं
9: अब खुले में शौच नहीं।
11: मैं नहीं करूंगी आज की बात तुम्हारा कोई काम।
12: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
13: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
12: किससे?
13: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। हाजिर हो गई हूँ दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी सुबह आप सभी की हो चुकी है, और जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया था दोस्तों, तो कल तो उस तरह से बारिश खैर देखी नहीं गई, लेकिन आज सुबह की हम बात करें तो बहुत ही तेज और मतलब गर्जन के साथ जो है बारिश आप सभी ने बहुत ही प्यारी सी इस शुरुआत के साथ, है ना। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लाइटली ले लेते हैं कि दो दिन का अलर्ट है और कल नहीं हुई तो शायद अगले दिन भी नहीं होगी, लेकिन मौसम है और मौसम कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता, तो हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत रहती है। तो आज 21 जुलाई 2026 का दिन है, मंगलवार का दिन है। हर दिन की खास पलों के साथ, खास इतिहास के साथ, और इन दिनों जो इतिहास है वो तो बहुत ही खास है दोस्तों। तो आज के कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत प्यार से सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की भी इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। दोस्तों, समय का चक्र, ये तो संभव ही नहीं कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, वो तो बस अपनी राह चलता चला जाता है। कभी खुशियों की लहरें लाता है तो कभी आंसुओं की धुंध छोड़ जाता है, पर हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाता है। हर परिवर्तन नया सबक दे जाता है। जीवन कोई तस्वीर नहीं जो दोहराई जाए, ये तो बहती हुई नदी है जहां हर मोड़ नया है, हर लहर किसी याद का निशान लिए है। हम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते सपने और रास्ते सब बदलते हैं। बस जरूरत है तो बस इतनी कि हम भी उस बदलाव के संग ढलते रहें, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है, ये तो निरंतर बहने की कहानी है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है और हर दर्द आने वाली मुस्कान की निशानी है।

दोस्तों इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं मौसम की अपडेट की ओर। तो दोस्तों मौसम की हम बात करें तो इस समय धर्मशाला के तापमान लगभग जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी इस समय महसूस कर सकते हैं। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और दोस्तों जिस तरह से हमारे आसपास, हम खैर यहाँ की बात करें तो हम तो बारिश भी लगी है लेकिन हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि बारिश है, बाहर जाके क्या करेंगे। और इतनी तेज़ बारिश है ना कि बाहर निकलना तक मुश्किल है वाकई में। अलग अलग क्षेत्रों के खैर अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग हालात होंगे। और यहाँ धर्मशाला की बात करें तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ऐसे में हम आराम से बैठे हैं, आराम से अपने घरों में चाय एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं या फिर अपनी ट्रैवलिंग एंजॉय कर रहे हैं, चाहे गाड़ी में, चाहे बस में, चाहे जिस भी तरह से। लेकिन सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात जो कि 20 जुलाई की हम बात करें तो 20 जुलाई का दिन सभी की आंखों के सामने एक इतिहास की तरह ही बनकर रह गया, बन गया, रहने गया बल्कि बन गया। और ये दिन सबकी आंखों में आंसू लाने वाला दिन है। ऐसा क्या हुआ, क्यों आंसू लाने वाली बातें हैं, तो दोस्तों इस पे हम जरूर बात करेंगे। बहुत गंभीर बात है, बहुत इमोशनल बात है, लेकिन जहां बच्चों की बात आ जाती है तो वहां हर किसी को एक इमोशनल सा जुड़ाव तो हो ही जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों जानेंगे जरूर क्यों खास है। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का यूज आप सभी कर रहे हैं, हर किसी के हाथों में फोन है और दिन भर जो है हम रील्स जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। और जहां हम फोन से अवेयर हो रहे हैं, ये फालतू की चीजें देखने के बजाय कुछ अच्छा देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप बहुत से लोग जानते होंगे कि क्यों 20 जुलाई की बात की जा रही है और क्यों खास उस दिन को माना जा रहा है। कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं तो वो भी जान जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ अब समय हो गया है कुछ अपने आसपास की खास जानकारियों का। जी दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ।
1: शिमला के ठियोग उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज रहेगा अवकाश। वर्षा से विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार। चंबा जिला में 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू। किन्नौर में NH5 यातायात के लिए बंद। सरकार द्वारा MIS के तहत सेब खरीद समर्थन मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा ने जताई निराशा। मंडी के गोपालपुर विकास खंड में सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती से सफलता की नई मिसाल की पेश। और देश को मिली डेंगू की पहली वैक्सीन, औषधिक महानियंत्रक से मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने सिरमौर जिले के लिए फ्लैश फ्लड की संभावना को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार आज 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में अनेक स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में आज दूसरे दिन भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला के आनी और निरमंड उपमंडल सहित शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में भी आज एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान हो रही मानसून की वर्षा से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की शूण पंचायत में बादल फटने की एक घटना से नदी नाले उफान पर है, जिससे यहां कल VB जीराम जी योजना के तहत कार्य में जुटे 20 लोग फंस गए थे, जिन्हें बीती रात रेस्क्यू किया गया है। लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण सड़क मार्ग बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है और सीमा सड़क संगठन को इस सड़क मार्ग की बहाली के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र के किसानों व बागवानों की फसल को मंडियों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके। किन्नौर जिला में भी सतलुज नदी उफान पर है और कड़छम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। बांध परियोजना प्रबंधन ने बांध से कभी भी पानी छोड़ने की संभावना को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। जिला में शलखर और समदो के निकट 2 और अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बंद हो गया है, जिससे काजा, स्पीति, पूह और रिकोंगपियो के बीच यातायात अवरुद्ध है। सिरमौर जिला में गिरी जटोन डैम में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है और नदी के साथ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। भारत में इस वर्ष जून तक 55,49,00,000 से अधिक उपयोगकर्ता UPI से जुड़ चुके हैं। ये जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में UPI के जरिए 314,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने बताया कि UPI लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि UPI को कई देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा गया है, जिससे व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान को आसान बनाया जा सके। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है और राज्य मंत्रिमंडल ने कल MIS के तहत सेब खरीद को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बराकटा ने निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि सेब समर्थन मूल्य में 2 साल बाद भी वृद्धि नहीं की गई है।
2: पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी शिमला में, उसमें हम सब बागवानी आशा कर रहे थे कि जो HPMC द्वारा, हिमफेड द्वारा जो सी ग्रेड का सेब हमारे से लिया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, उस रेट में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया और ये लगातार दूसरा साल हो गया है 150 करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों का लंबित है जो बागवानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती है कि जो हमारे MIS की पेमेंट्स है पिछले कुछ सालों की, उसको क्लियर करवाए और साथ ही साथ जो है MIS इस सीजन में किया जाएगा उसमें बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।
1: भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जाँच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिला के गोपालपुर विकासखंड के खनोट गांव के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। मात्र 2 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती कर वे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर विकास खंड के खनोट गांव के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। मात्र 2 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती कर वे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। सुनील कुमार का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी खेती की लागत घटी है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह बंद हुआ है और मिट्टी की उर्वरता में लगातार सुधार आया है। पिछले वर्ष उन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की जिसमें 10 से 15 हजार रुपए के निवेश पर लगभग 60 से 70 हजार रुपए की आय हुई और करीब 50 हजार रुपए किया शुद्ध लाभ हुआ। वर्तमान में वे कई फसलों की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: आयकर विभाग द्वारा कल 22 जुलाई को शिमला स्थित रेलवे बोर्ड भवन में करदाता जागरूकता व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न समय पर और सही तरीके से दाखिल करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को सही ITR फॉर्म के चयन, उपयुक्त कर व्यवस्था के चुनाव, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, आयकर कानूनों में हाल के संशोधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णयों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल में भरे जाएंगे 7,500 पद। नंबरदारों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। पंजाब केसरी ने लिखा है, सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7,500 पदों पर होगी भर्ती। अब कुफरी अभेद्य और रूबी भी उगाएंगे हिमाचल के किसान, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र सरकार ने आलू की 2 नई किस्मों की खेती के लिए जारी की अधिसूचना। दैनिक जागरण के शब्द है, आलू करेगा मालाबाल, नहीं लगेगा झुलसा रोग। दैनिक भास्कर ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, विवाह भले ही कानूनन अमान्य हो उसे अनैतिक नहीं ठहरा सकते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में आज भारी वर्षा का रेड अलर्ट। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों सहित कुल्लू के आनी और निरमंड और शिमला के ठियोग उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज रहेगा अवकाश। वर्षा से विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार, चंबा जिला में 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू, किन्नौर में NH5 यातायात के लिए बंद। सरकार द्वारा MIS के तहत सेब खरीद समर्थन मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा ने जताई निराशा। मंडी के गोपालपुर विकास खंड में सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती से सफलता की नई मिसाल की पेश। और देश को मिली डेंगू की पहली वैक्सीन, औषधि नियंत्रण ने दी मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जो कि आप सभी सुनते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने रेडियो सेट के माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से। तो कहीं भी किसी भी कोने में आप एंजॉय कर सकते हैं इन खास जानकारियों को, खास बातों को, खास प्यारे प्यारे से गीत संगीत। तो दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि वो जो भी कर्म करते हैं, अगर हनुमान जी या किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर ले, गुरु बना ले, तो वो अपने किए के परिणामों से बच जाएंगे। यानी कि श्रद्धा भक्ति की ओर अगर वो ध्यान लगा लें, कुछ भी किसी के भी साथ गलत करके। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? सच तो ये है दोस्तों कि इस दुनिया में अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच पाया। हम जो बातें करते हैं वो अक्सर सिर्फ कहने सुनने की होती हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। भगवान के लिए ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, ये हमारे कर्मों से बचना नहीं होता है। भक्ति का असली उद्देश्य जो होता है वो कष्ट सहने की शक्ति पाना। जब बुरा वक्त आता है और हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तब ईश्वर की आराधना हमें उस दर्द को सहने का धैर्य और साहस देती है। दर्द पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, पर हाँ, उसे झेलने की हिम्मत जरूर मिल जाती है। जिम्मेदारी लेना ही परिपक्वता है। अपने कर्मों का सामना साहस के साथ करें, हर चुनौती का सामना पूरी मजबूती और लगन के साथ करें, फिर चाहे कोई भी आपके सामने क्यों ना आ जाए। तो यही है जिंदगी की कुछ खास बातें, और कार्यक्रम में हम और भी कुछ खास बातें करने वाले हैं दोस्तों आज, क्योंकि धर्मशाला जो है आप सभी जानते हैं एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। चाहे मैक्लोडगंज की बात करें, चाहे नड्डी की हम बात करें, वहीं हम भागसुनाग मंदिर झरने भागसु जो वहाँ पे मंदिर में हम जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बरसात के समय में हमें बहुत सी ऐसी जो है बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे भागसू वाटरफॉल है, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता के साथ जाना चाहिए मौसम का अपडेट लेकर। तो फिलहाल आइए दोस्तों, ये बातचीत हम जरूर करेंगे, जरूर जानेंगे कि किस तरह से सावधानियां जो हैं वो बरती जा सकती हैं, किस तरह से हम खुद को सेफ रख सकते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को थोड़ी सी एक्साइटमेंट, जो नहीं जानते हैं, वैसे तो देश के कोने कोने तक ये बात फैली हुई है, हर कोई जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि ये आज का दिन या कल 20 जुलाई का दिन क्यों खास जो है इसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, तो खैर न्यूज़ चैनल्स में थोड़ा अलग तरीके से भी बताया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया पे बच्चों के द्वारा जो रील्स वगैरह अपलोड की गई हैं, क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे तो बहुत सारे बच्चे जो है वीडियोज़ बना भी नहीं पाए, और क्योंकि सिग्नल नहीं था और सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा था, जब जैमर्स लगे हों तो ना कोई कॉल ना कोई इंटरनेट जो है वो सब बंद हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो उस अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे, तो कल का दिन बहुत ही दुखद उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने नीट पेपर के लिए सुसाइड किया, उनकी आवाज़ बनकर जो बच्चे प्रशासन के पास गए थे कि आखिर क्यों ये पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, क्यों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, क्यों बच्चों को इस तरह से फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें। तो बच्चों की एक ही मांग है कि इस पे मतलब कि कोई एक्शन लिया जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जाएं। तो उनके सवाल हैं बहुत सारे, तो उन सवालों के जवाब अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं, तो उसी के चलते जो है वो वहाँ पर डटे हुए हैं और बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में जो हैं वो वहाँ हैं। और कल जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं दुख भरा समय वो रहा, न जाने किस तरह से क्या है क्या नहीं, वो तो खैर आप सभी जानते हैं कि क्या गलत होगा क्या सही होगा, जब आप देखेंगे जब आप सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल पीसफुली, शांति से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरह से जो है चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, इस बात पर ज़रूर सोचिए विचारिए। और आज की बात करें ना दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे जो अनशन पे बैठे हुए थे उन्होंने कल जो मार्च थी उसके बाद में भी अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सोनम वांगचुक की हम बात करें, उनकी जो सर मतलब अनशन पे थे वो भी 28 जून से वो अनशन पे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उन बच्चों की आवाज़ बनकर उनके साथ जुड़े हैं, तो वो अभी तक, हालांकि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है, बल्कि उसे एक्सटेंड करने का उन्होंने डिसीजन लिया है कल की सिचुएशन को देखते हुए। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी की हम बात करें तो वो भी संसद के बाहर जो है वो विरोध में जो है वो भी धरने पे जो है वहाँ बैठ गए हैं कि बच्चों के साथ जो हुआ है उसका न्याय उन्हें मिलना चाहिए, कि बच्चों के साथ बहुत गलत तरह से व्यवहार किया गया, उनके साथ जो है उनकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक नहीं पहुंचने दी जा रही। तो ज़रूर सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए और जानिए कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से आपको आवाज़ उठानी चाहिए, किसी वेस पे नहीं दोस्तों, सिर्फ एक इंसानियत होने के नाते, बाकी सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए, क्योंकि कई बार हम होता है ना कि एक उसको लेकर चलते हैं, तो हम आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो हमें सिर्फ इंसानियत होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट के माँ बाप होने के नाते, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें इंसाफ दिलाने के नाते इस पर आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, तो ज़रूर आप इस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत।

जी दोस्तों, तो आज अगर आप उन बच्चों की जुबान से, एक एक की जुबान से अगर कुछ शब्द सुनेंगे तो बस यही सुनेंगे कि चाहे मर जाएंगे लेकिन आवाज़ उठा कर रहेंगे, अपने हक के लिए हम लड़कर रहेंगे। जो जवाब हमें चाहिए, जो सवाल हमारे हैं, वो हम ज़रूर प्रशासन तक पहुंचा कर रहेंगे। और उसके बदले में किस तरह से जो है, जो भी हो देखा जाएगा। मतलब बच्चों का जुनून और हिम्मत इस तरह से अपने देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने से छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि उस आवाज़ में 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हैं और कहीं ना कहीं वो भी इसका शिकार हुए हैं, यानी कि मारपीट का शिकार हुए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भावनाएं तो हो ही जाती है ना, कि किस तरह से, क्या हम सही राह की ओर जा रहे हैं या गलत राह की ओर जा रहे हैं। हम इंसान हैं, सबसे पहली बात तो हम यही भूल जाते हैं कि हम किसी के पीछे चलने से पहले हम पहले इंसान हैं। इंसानियत क्यों आज के समय में वो दबती जा रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों इंसानियत को हम मार रहे हैं, अपने ही वजूद को मिटा रहे हैं, क्यों? सवाल हम खुद खुद पे खड़े करवा रहे हैं। आज जितने युवा जागरूक हुए हैं, जितने युवा आज खड़े हैं इस लड़ाई में, हम सबको उस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं सभी के, और अपने अपने तरीके से जो है हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पे सोच विचार करना ज़रूर चाहिए।

तो बहुत ही प्यारा सा ये देशभक्ति गीत आप सभी ने सुना, और वाकई में अगर उन सिचुएशनों को, उस माहौल को और इस गीत को एक साथ जोड़ा जाए तो सच में आंखों में पानी और ऐसे, खैर क्या कर कह सकते हैं दोस्तों, बस यही कह सकते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, एक तरफ से तो हम कहते हैं लेकिन जब उठाई जाती है तो इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि दुख बस इस बात का है ज़्यादातर लोगों को कि एक शांतिपूर्ण आवाज़ उठाई जा रही थी, कोई इसमें हुड़दंग नहीं था, कोई इसमें किसी के लिए बुरा नहीं था, सिंपल सी बात थी कि अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है ये आवाज़ उठाई जा रही थी। और छात्रों की एक ही मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा जो है वो प्रशासन ले, अगर वो बेहतर से काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को मौका दिया जाए। बस इतनी सी उनके सवाल, या तो उनसे सवाल थे कि अगर इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बच्चों के लिए सुचारू बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे मेहनत करके बहुत यहाँ वहाँ से उधार लेकर जो है शिक्षा पूरी करवाते हैं, पर फिर आगे जाके जब पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चों के सपने पूरी तरह से टूट जाते, पूरी तरह से बिखर जाते और उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। और इस बार बहुत से बच्चों ने ऐसा किया भी, एक कोचिंग सेंटर में भी बहुत से बच्चों की जान गई। खैर वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन हाँ बच्चों की जान तो गई, लेकिन उस पर कोई मतलब कोई राय नहीं, कोई किसी तरह से बात नहीं हुई। शायद इसीलिए ये चीज़ आज इतनी बड़ी जो है वो बनकर सामने आई है। तो आप भी इस पे ज़रूर सोचिए दोस्तों, और ज़रूर विचार कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए, किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

तो इस प्यारे से गीत के साथ समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दोस्तों, कभी भी अपनी जिंदगी को किसी एक हार से मत आंकना। एक बुरा दिन, एक बुरा महीना या फिर एक बुरा साल आपकी पूरी कहानी तय नहीं करता। याद रखिए, सबसे ऊंची उड़ान वही पक्षी भरता है जिसने सबसे तेज हवाओं का सामना किया हो। अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो समझ लीजिए कि जिंदगी आपके किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। बस चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की मुश्किलों से डर कर वापस नहीं लौटते, बल्कि डटे रहते हैं और अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं, आगे की ओर चलते रहते हैं। तो हमें भी इसी तरह से आगे की ओर ही बढ़ते रहना है दोस्तों, क्योंकि जहां रुक गए वहां जिंदगी रुक गई, वहां सपने रुक गए, वहां सब खत्म हो गया। इसलिए बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको खुद को उस तरह से प्रिपेयर करना है कि कोई बात नहीं, एक बार हार गए तो दूसरी बार जीत मिलेगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे लेकिन जीत हासिल करके रहेंगे। बस ये जुनून और हिम्मत

जब हर इंसान में आ जाए तो मुश्किलें बहुत कम हो जाती हैं। फिलहाल कार्यक्रम में भी इन बातों से थोड़ा सा जरूरत है रुख मनोरंजन की और बदलने की। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों बहुत ही प्यारा संगीत आप सभी ने एंजॉय किया। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब रुख करते हैं कार्यक्रम में जानकारियों की ओर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार अब एक ऐतिहासिक और अनूठी इंजीनियरिंग का गवाह बनने जा रहा है। जल्द ही इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले बड़े विमान मांझी खट की जलधारा के ठीक ऊपर से रफ्तार भरते नजर आएंगे। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए मांझी खट पर करीब 380 मीटर लंबा एक विशेष पुल बनाया जाएगा, जिसके ऊपर ही नई हवाई पट्टी का निर्माण होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट हिमालय क्षेत्र का पहला और देश का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जहां नदी के ऊपर बने ढांचे पर रनवे तैयार होगा। उधर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज फैरवा का कहना है कि प्रदेश सरकार इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भूमि अधिग्रहण के साथ ही मांझी खट पर बनने वाले ब्रिज के तकनीकी पहलुओं पर भी काम शुरू हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र में अपनी तरह की ये अनूठी पहल है। नदी के ऊपर रनवे बनाने का देश में अब तक केवल एक ही उदाहरण मौजूद है। जी दोस्तों, इससे पहले चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे अडायर नदी के ऊपर से गुजरता है। अब गग्गल एयरपोर्ट भी आधुनिक तकनीक अपनाने जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश देश के विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। तो ये बहुत ही खास और गर्वान्वित जो है न्यूज है, आप सभी के लिए जानकारी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

0: ऋतु जी हम जा रहे हैं।
1: दोस्तों 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जी दोस्तों, और शुरुआत में ही हमने बात की थी कि बरसात के मौसम में हमें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा घास फूस हो। तभी तो बरसात से पहले पहले जो है हम अपने घरों के आसपास जो है सफाई कर लेते हैं, और घरों में ही नहीं बल्कि हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपने गाँव में पूरी तरह से जो है रास्तों को साफ करें, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं कि हम अपने अपने एरिया तक तो कर लेते हैं लेकिन बाकी हम रहने देते हैं। हम यही कई बार सपोर्ट खैर दूसरे फैमिलीज़ का नहीं भी हो पाता है, लेकिन हाँ बात करके जो है जब हम एक साथ काम करेंगे, जब आपस में भेदभाव ना रख कर एक दूसरे के प्रति जो है वो बैर भाव ना रख कर एक अपनापन और एकजुट होकर जब हम काम करते हैं तो मुश्किलें कम हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो वैसे करके जो है हम हर किसी को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम रास्तों में जाते हैं तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है, नदी नालों में जब कूड़ा कचरा फंस जाता है तो वो सारा पानी रास्तों में आ जाता है, तो रास्तों में चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही घास भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पाँव तक रखने का डर लगता है कि कहीं कोई सांप वगैरह काट ना ले या कोई कुछ ऐसा हो ना जाए जिससे कि हमें दिक्कत हो जाए। तो पहले ही हम ये सावधानियाँ अगर बरत लें, पहले ही हम इसका ध्यान रखें तो शायद कुछ हद तक अपने साथ साथ हम औरों का भी ध्यान जो है वो रख सकते हैं। कहते हैं ना, समाज सेवा देश सेवा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम अंतर मन से किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो वाकई में जो सुकून आप हर कहीं ढूंढते फिरते हैं ना वो मिल जाता है। तो सुकून को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मत भटकिए, बल्कि अपने अंदर झांक कर देखिए और सुकून को पाइए और एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को, जिस तरह से आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को।

दोस्तों अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत मैं हूँ ना फिल्म का। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों धौलाधार की गोद में बसी धर्मशाला केवल एक शहर नहीं बल्कि प्रकृति अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम है। तो इस संगम में बहुत सी प्यारी प्यारी सी जगह भी हैं, जहां लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं। उन्हीं में से यानी उन्हीं खूबसूरत सी जगहों में से एक भागसूनाग वाटरफॉल, बहुत से लोग वहां एक सुकून की सांस लेने जाते हैं एंजॉय के लिए। कहते हैं ना दोस्तों, प्रकृति का जो नजारा है वो हर नजारे से बखरा है, यानी कि हर नजारे से अलग है। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों से गिरता पानी, ठंडी हवा और प्रकृति का संगीत मन को पूरी तरह सुकून से भर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक झरना नहीं है, इसके पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जो है वो बताई जाती है, जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा भागसु के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। प्रजा की प्यास बुझाने के लिए राजा पानी की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार वे वहां पहुंचे पवित्र नाग डल झील में। पवित्र नाग डल झील उन्होंने वहां से जल लिया। नाग देवता को जब इसका पता चला तो राजा और नाग देवता के बीच युद्ध हुआ। राजा पराजित हुए, लेकिन जब नाग देवता को राजा के त्याग का पता चला कि उन्होंने ये सब अपनी प्रजा के लिए किया, तो उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। यहीं से इस स्थान का नाम पड़ा भागसूनाग। आज भी दोस्तों यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर और प्राकृतिक जलधारा लोगों की आस्था का केंद्र है। तो है ना कि कितना खूबसूरत सा प्लेस, कितना खूबसूरत, सुकून भरा, शांति प्रिय। लेकिन जाने से पहले हमें मौसम की अपडेट, सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों और भी बात करेंगे, और भी जानेंगे, लेकिन आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया संजू राठौर की आवाज में और उनके साथियों की आवाजों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से कुछ खास बातों की और जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

तो दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, क्या प्यार से ज्यादा जरूरी आपकी मानसिक शक्ति है, मानसिक शांति है? जीवन के सफर में हमें अक्सर ऐसे कठिन फैसलों का सामना करना पड़ता है जिन्हें लेना हमारे दिल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। सबसे मुश्किल निर्णय तब होता है जब हम किसी ऐसे इंसान को छोड़ते हैं जिसे हम हमेशा, मतलब बहुत करीब जो है आपकी जिंदगी में रहे हों और आप उन्हें अपने करीब ही रखना चाहते हों। बहुत सारे लोग ऐसे अननोन पर्सन हो या आपके मतलब फैमिली पर्संस में से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि प्यार सिर्फ और सिर्फ हम जो है अपने लाइफ पार्टनर से ही नहीं करते, हम अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहनों से भी प्यार करते हैं, लेकिन हर एक प्यार की परिभाषा अलग अलग रहती है। ये फैसला क्यों इतना कठिन है? प्यार अक्सर हमें एक सुरक्षित और आरामदायक एहसास देता है। हालांकि कभी कभी जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, उनका व्यवहार या उनके साथ बिताया गया समय हमारी मानसिक शांति के लिए हानिकारक बन जाता है। और ऐसे में क्या प्यार के नाम पर खुद को मानसिक रूप से परेशान करना सही है? क्या आपने कभी ऐसे इंसान से दूरी बनाई जिसे आप आज भी अपने करीब पाना चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका साथ आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है? क्या उनसे दूर जाकर आपको वो शांति मिली? तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है दोस्तों, शब्दों का अर्थ अलग अलग रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी से जब ये जुड़ जाती हैं तो बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ हमारे सामने बातें आ जाती हैं। तो जरूर इस पर सोच विचार कीजिए कि किस तरह से क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे इंसान, कोई खास पर्सन जो कि आपके बहुत ही करीब हो, बहुत मतलब हर सुख दुख में आपका साथ निभाने वाले हों, लेकिन जाने अनजाने में कुछ सिचुएशंस की वजह से आपको उनसे दूर जाना पड़ा हो और आपको तकलीफ आज भी उतनी ही होती है। तो होते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे खास पर्सन्स, तो ज़रूर उनकी याद में थोड़ा सा अपने आप को लेकर जाइए और एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: शाहरुख।
1: दोस्तों इस प्यारी सी बातचीत को आगे की ओर लेकर चलते हैं और इन प्यारे प्यारे से गीतों के सफर के साथ अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम में एक और बेहद खास जानकारी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के बीच स्नातकोत्तर पीजी डिग्री डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को निर्धारित तिथि के अनुसार संचालित करने का निर्णय लिया है। हालांकि खराब मौसम के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें भविष्य में परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय जिला दंड अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर लिया गया है। प्रदेश में भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। तो कई बार होता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन या फिर कैंसिल किए जाते हैं, तो ऐसे में जो है ये अधिसूचना दी गई है कि एग्ज़ाम्स जो है वो उसी डे उसी तारीख को होंगे जिस तरह से निर्धारित है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो ऐसे में ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा मीठा सा गीत।

सो बहुत ही प्यारा सा ये मस्ती भरा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त सुरुचिका के साथ। और कार्यक्रम में हम बहुत खास खास बातें, चाहे वो हमारी डेली अपडेट रूटीन से जुड़ी हैं, चाहे हमारे देश से जुड़ी बात है, चाहे फिर हमारी जिंदगी से जुड़ी बात है। जब देश से जुड़ी बात है तो जिंदगी से भी जुड़ी है। खैर दोस्तों, बात है सिर्फ जागरूकता की, मानसिक सोच की, क्योंकि कुछ लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इतना सब करने की, क्यों ही जो है ये सब किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब अपने हक की बात आ जाए तो फिर हक के लिए अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद कभी भी नहीं उठा पाएंगे, तो आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो ज़िंदगी है दोस्तों, और ज़िंदगी के समय का कोई भरोसा नहीं है कि आज हम हैं और कल नहीं है, तो क्यों ना कुछ खास किया जाए अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी एक इमेज बनाने के लिए, वो भी अच्छा काम, ऐसा नहीं कि बुरा काम, क्योंकि कई बार बुरे काम करके भी पहचान बन ही जाती है ना सामने। तो हमें सिर्फ अच्छाई के राह पर आगे चलना है। ये आपस में लड़ाई झगड़े करके या दूसरों के बातों में आके हम डिसीजंस ना लें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। आंखों देखी बातें, कानों सुनी बातें, जो आपको लगे कि नहीं वाकई में सही हैं, तो उस पर बिलीव कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, और फिर जो है आप उस बात के परिणाम तक पहुँचिए। फिर आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। फिर जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, जो जवाब आता है, बस उसी पे विश्वास कीजिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, और वो भी सिर्फ कहना नहीं, घुमा फिरा के बातों को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन करके उसे सबके सामने लेकर आना। तो ये सब तो दोस्तों आज तक देखते ही आए हैं, लेकिन अब क्यों ना सच का साथ दिया जाए, सच के लिए आवाज उठाई जाए, अपने हक के लिए आवाज उठाई जाए। तो हक के लिए आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस समय तो हमारा मन है एक प्यारा सा गीत सुनने का, तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि एक मरे हुए इंसान को नहीं मालूम कि आपने उसके जाने के बाद कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि आपकी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। तस्वीरों पर चढ़े फूलों की महक उन तक नहीं पहुंचती जो जा चुके हैं, पर जीते जी दिए गए सम्मान की महक इंसान कभी नहीं भूलता। अलविदा कह चुके लोगों को मनाने से बेहतर है जो पास हैं, आज उनके आंसुओं की वजह बनने से बचा जाए, लेकिन हम उनके आंसुओं की वजह बनते जा रहे हैं, उनके शरीर से बहे उस खून की वजह बनते जा रहे हैं, एक एक बूंद की वजह बनते जा रहे हैं। क्यों अभी भी आंखें बंद करके लोग बैठे हैं, अभी भी चुप हैं, अभी भी शांत हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जो बात आज किसी और घर की है, उसे अपने घर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जब आपके घर तक बात पहुंचेगी, आप तब आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों, तब आवाज उठाने का क्या फायदा, जब आपके घर में ऐसे दुख की बात, अगर न जाने, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हम उस बात का इंतजार हम करते ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जब समय होता है चीजों को संभालने का, आवाज उठाने का, समय को संभालने का, तब हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम दुनिया की उस भीड़ के पीछे चलते रहते हैं, तब हमारी वो अंतरात्मा कहीं दब जाती है। लेकिन जब गलत हो जाता है, खास करके खुद के साथ, खुद के किसी खास पर्सन के साथ, तब वो आंखें खुलती हैं, तब वो अंतरात्मा जागती है, लेकिन तब वो समय हाथ से निकल चुका होता है। तो ये समय का सबक है, इंसानों का भी सबक है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम घमंड में आकर, पैसों के इस जाल में फंसकर हम सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझिए, सोचिए और आंखें खोलिए और विचार कीजिए, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। किसी और से नहीं पूछना है, पर पूछना खुद से है, खुद की अंतरात्मा से। तो जरूर पूछकर देखिए क्या जवाब आता है, क्या कहती है आपके अंदर आत्मा। फिलहाल एंजॉय कीजिए कह रहे प्यारा सा गीत।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज का ये बहुत ही प्यारा सा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो दोस्तों, ये जो प्यारे प्यारे से गीत होते हैं ये हमें कई बार थोड़ा मुश्किलों से आसानी की ओर लेकर जाते हैं, यानी कि जो हमारे दिमाग में परेशानियां चल रही होती हैं तो कुछ हद तक शांति जो है वो महसूस करा देते हैं। कई बार तो हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तब भी हम म्यूज़िक को जो है एक अपना माध्यम बनाते हैं और आराम से सो जाते हैं सुकून की नींद जी। तो बहुत ही प्यारा सा, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और बहुत से शायद हमारे दोस्तों को ये शिकायत रहती है कि रुचिका बहुत ज़्यादा बोलती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब कोशिश है मेरी थोड़ा कम कम बोलने की, मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, क्योंकि कहते हैं ना कि आदत से मजबूर जो इंसान होता है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा चीज़ों को वापस कुछ बदलाव लाना, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बातें, आपका जो कहते हैं खुशी जहाँ है, तो हम तो आपके लिए आपकी खुशी को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैं इस आदत को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर पाई हूँ इन कुछ दिनों में, बीते 2-3 दिनों में, तो कोशिश यही रहेगी कि आगे भी उसे और ज़्यादा कम कर सकूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का और दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ल

0: जाते हो फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए दो हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
2: डॉक्टर,
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
0: और नहीं तो क्या, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
2: वो किसी को भी हो सकता है।
0: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अरे ले आओ यार नाश्ता।
4: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
4: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
3: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
4: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
4: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर HIV कभी न दूं।
1: अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के ICTC में सलाह और HIV टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: सुना?
5: मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं।
6: एक हफ्ता?
5: हाँ।
6: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, 2-4 घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आ जाना।
4: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, 2-3 घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी।
7: अरे बाप रे।
8: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता
9: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
10: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
9: तरक्की?
10: देखो मुन्ना, पहले गाँव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
9: तरक्की।
10: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
11: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
10: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
12: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
10: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
9: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
11: अब खुले में शौच नहीं।
13: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
14: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
13: किससे?
14: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई कड़ी के साथ। जी दोस्तों, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी हाजिर हो गए हैं हम दोनों कार्यक्रम लेकर मेरे लिए हौसलों की उड़ान। तो आपके हौसलों की उड़ान कहाँ तक पहुँची है, हम कहाँ तक कोशिश कर पाए हैं उस उड़ान को भरने के लिए, वो तो आप सभी के रिस्पॉन्सेज ही बता सकते हैं दोस्तों। तो जुड़ने के लिए हम आप सभी को जरूर बताते हैं आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किस माध्यम से, किस तरह से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस बार फिर से एक नई जानकारी के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। हर बार आप सभी की सतर्कता के लिए, आप सभी की जागरूकता के लिए हम कोई ना कोई जानकारी लेकर आते हैं। तो उसी तरह से इस बार भी हम एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। वो क्या जानकारी रहने वाली है, क्या बातचीत आज के कार्यक्रम की रहने वाली है, ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है इस अपने बहुत ही खास और मनपसंद कार्यक्रम के साथ।
1: बिल्कुल रुचिका, और मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम को हम बहुत ही कोशिश करते हैं अधिक से अधिक जानकारी हमारे दोस्तों तक पहुँचे और उस जानकारी का वो लाभ भी उठाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम हर बार जो है ना टॉपिक बता देते हैं अपने दोस्तों को, तो क्यों ना इस बार उनको हिंट दिया जाए।
0: बिल्कुल, हम बात करेंगे, बाकी गेस कर सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त कि आखिर आज के कार्यक्रम में कौन सी बातचीत होने वाली है।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना इनको हिंट देने के लिए गाना सुना दिया जाए।
0: जी जरूर, तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत और गेस कीजिए कि आखिर आज की इस बातचीत में ऐसी कौन सी खास बातचीत होने वाली है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। तो आते हैं वापस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: रुचिका, बहुत ही प्यारा आपने गीत सुनाया हम सभी को, और मुझे लगता है हमारे दोस्तों को अंदाजा हो ही गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं, किस विषय पे बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल। तो रूमा जी, सबसे पहले हम उस विषय पे जाने से पहले थोड़ा सा, अगर कोई गेस नहीं भी कर पाया तो उन्हें गेस करने देते हैं। जैसे नॉर्मली आजकल हम देखते भी है, आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है इस पे कि पहले के समय में एक शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ज्यादा अहमियत दी जाती थी या अब के समय में ज्यादा अहमियत दी जाती है।
0: रुचिका, बहुत ही मुश्किल सा सवाल आपने मेरे सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि आजकल के जिस तरह के हालात हमारे सामने आते हैं, हम देख रहे हैं
1: जी।
0: पहले का जब दौर था तो शादी जैसा पवित्र बंधन जो था, जहाँ पे दो आत्माओं का मिलन इसको माना जाता था, दो व्यक्ति जब शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाते थे तो वो सारा जीवन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए, एक दूसरे के परिवार को समर्थन देने के लिए वो अपना जीवन गुजार देते थे
1: जी।
0: लेकिन और बहुत ज़्यादा उस समय में जो सहनशीलता बहुत ज़्यादा थी लोगों में, और आए दिन कभी भी ऐसा नहीं होता था, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब किसी लड़की को विदा कर दिया जाता था तो उसको ये कह दिया जाता था, अब यहाँ से तेरी डोली गई है, ससुराल से अब अच्छी ही आनी चाहिए। लेकिन आजकल के समय में क्या हो गया है, हम लोगों में सहनशीलता कम हो गई है, हमारी जरूरतें भी बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसा नहीं होता होगा, एक समय था जब हम लोग, हमारे साथ अत्याचार भी होता था तो हम छुपा जाते थे, लेकिन आजकल औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे महिला और पुरुष को लगता है कि उनके बीच इस संबंध को अब आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, कोर्ट का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं और तलाक तक भी पहुँच जाते हैं
1: जी।
0: अब मुद्दा रुचिका ये नहीं था कि उस समय का माहौल अच्छा था या आज का माहौल अच्छा है, एक बच्चों को शुरू से सिखाया जाता था, चाहे वो लड़का होता था या लड़की, उन्होंने शादी के बंधन में बंधना है तो उस बंधन को निभाना है। लेकिन आजकल के समय में ये है कि हम लोग खुद ही ऐसी बातें करते हैं कि अगर निभा सकते हैं तो ठीक है, नहीं निभा सकते हैं तो आप अपना अपना रास्ता चुन लीजिए।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रूमा जी कि अब जो है ना, अब शादी एक तरह से दिखावा बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि समाज को दिखाने के लिए, कि समाज के लोग बातें करेंगे कि अब तक शादी नहीं हुई या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुई, तो लोग उस बात को शो करने के लिए, कि ताकि कोई उंगली ना उठाए, तो हम ऐसे ही बिना मन से कहीं भी, जहाँ पे भी घर वाले बोलते हैं या जहाँ हमारा मन करता है, तब हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाती है।
0: बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं होती है, शादी हो जाती है तो दो परिवार उसके साथ जुड़ जाते हैं, उन दोनों परिवारों की भी समस्या बन जाती है, आगे जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए भी माता पिता का जो झगड़ा है वो उनके जीवन में भी तनाव लाता है, मानसिक परेशानियां लाता है। तो ये देखिए, हर घर में कहते हैं दो बर्तन हैं तो टकराते हैं, आवाज आती है, और हमारे समाज में ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिनके बीच झगड़ा नहीं होता है, लेकिन कई बार ये जो झगड़े हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। और देखो, कहते हैं ना, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर रिश्ते में होती है, माँ बेटी के रिश्ते में नोकझोंक होती है, बाप बेटे के रिश्ते में नोकझोंक होती है, और जहाँ पे हल्की फुल्की खटास ना हो तो रिश्तों की, वो मिठास भी हमें अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आपने हेल्दी रहना है ना, तो आपको खट्टा मीठा कड़वा हर एक चीज का अनुभव
1: लेना
0: करना चाहिए, और जिंदगी अच्छी भी तभी लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा रुमा जी आपने, क्योंकि जिंदगी में सुख दुख जो है दोनों ही हमारी जिंदगी का पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, खुशियां आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख आते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये दुख जो हमारी जिंदगी में आते हैं कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, जिंदगी की सीख दे कर जाते हैं।
0: बिल्कुल। और रुचिका, आज हम अपने दोस्तों को बता ही देते हैं, आज हम बात करेंगे विवाह जो है वो उसका पंजीकरण क्यों जरूरी है
1: जी।
0: क्योंकि अब बात पंजीकरण की, अभी हमारे दोस्त सोच रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि पहले का समय अच्छा था या आज का समय अच्छा है, पति पत्नी में नोकझोंक होती है या बात अलगाव तक पहुंच जाती है। मुद्दा ये नहीं है, हर एक घर का जो सिस्टम है अलग होता है, हर एक घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर एक पति पत्नी के संबंध भी अलग होते हैं, लेकिन कई जगह पे हमारे सामने इस तरह के मामले आते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छे से नहीं पनप पाता है, वो सही ढंग से उस रिश्ते को नहीं निभा पाते हैं, तो बात अलगाव तक आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि अगर हमारा विवाह किसी रजिस्ट्रार के पास कहीं भी पंजीकृत नहीं हुआ है, तो जो पति पत्नी हैं वो कानूनी अधिकारों से जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आज हम यही बात करेंगे कि विवाह का पंजीकरण क्यों करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब भी घर में किसी शादी की बात होती है ना हमारी रिश्तेदारी में, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर एक चीज की हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, शादी के कपड़ों से लेके खान पान तक, मेहमानों की आवभगत तक, हर एक चीज हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और वो जो खुशी हमारे चेहरों पे होती है ना, जैसे जैसे वो शादी नजदीक आती जाती है, तो वो अलग सा ही एक हमारे जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारे हाव भाव है, उनसे वो अलग ही निखार दिखता है। लेकिन जैसे ही हम क्या होते हैं, शादी की बाकी फॉर्मेलिटीज तो कर लेते हैं, लेकिन आजकल के समय की बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जरूरत है, महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए, वो ये है कि विवाह का पंजीकरण होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों जरूरी है। शादी तो जरूरी मान लिया, लेकिन शादी का पंजीकरण भी जरूरी है, ऐसा क्यों? तो जरूर जानेंगे रूमा मैम से, और उसे पहले लेंगे एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत, और फिर से वापस आते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जैसे कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि आखिर शादी का पंजीकरण करवाना क्यों जरूरी है, तो जानते हैं रूमा जी से कि ऐसा क्यों होता है और कानून की नजर में ये क्यों जरूरी है। तो रूमा जी सबसे पहले यही बात करते हैं कि विवाह का पंजीकरण होता क्या है और क्यों ये करवाना हमारे लिए इतना जरूरी है।
1: रुचिका जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पंजीकरण क्या होता है।
0: जी
1: आपने देखा होगा जैसे कोई बच्चा भी पैदा होता है तो हम फटाफट से हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेते हैं और अपने जो नज़दीकी हमारी ग्राम पंचायत होती है या जो भी म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पे हम जाके जो पंजीकरण अधिकारी होता है
0: जी
1: उसके पास जाके उस सर्टिफिकेट को जमा करवा देते हैं या जो भी उस बच्चे से संबंधित डिटेल होती है, नाम पता जो भी है उसको हम जमा करवा देते हैं ताकि उस बच्चे का नाम दर्ज हो जाए। क्योंकि देखिए पंजीकरण इसी तरह से रुचिका विवाह का भी पंजीकरण होता है। जब भी कोई व्यक्ति लड़का या लड़की शादी करते हैं आपस में तो उनका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक पंजीकरण अधिकारी होता है और ये पंचायत लेवल पर यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी जो है वो विवाह का पंजीकरण करते हैं। और इसकी जो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके मायके की जो पंचायत है जहाँ पे वो परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हुआ होता है
0: जी,
1: और परिवार रजिस्टर में जब नाम दर्ज होता है जब तक वो उस फैमिली से अपने मायके के फैमिली से उसका परिवार रजिस्टर से नाम नहीं करता है तब तक दूसरे परिवार के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए वो अपनी मायके की पंचायत से या अपने म्यूनिसिपल एरिया से वो नाम कटवाती है। वहाँ पे बकायदा बताया जाता है फलां तारीख को फलां लड़की की फलां व्यक्ति के साथ शादी हो गई है तो अब वहाँ पे पंजीकरण जरूरी है। तो वहाँ से जो पहली पंचायत होती है जहाँ उसका मायका है वो NOC दे देते हैं और वो NOC लेके वो अपनी पंचायत में जो भी पंजीकरण अधिकारी है उसके पास जाते हैं और वहाँ पे विवाह का पंजीकरण हो जाता है। जब तक विवाह का पंजीकरण रुचिका नहीं होता है आपने देखा है विवाह के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे घर में नया सदस्य आया है तो उसको राशन कार्ड में भी चढ़ाना है, अगर पति गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ पे भी उसको अपनी पत्नी का नाम एज ए नॉमिनी या फिर जो भी अपने उसमें देना होता है तो वो भी उसको देना पड़ता है। तो जब तक विवाह का पंजीकरण नहीं होता है तब तक ना तो वो अपने पति के जॉब रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होगा ना ही ग्राम पंचायत में जो परिवार रजिस्टर है उस परिवार का वो दर्ज होगा और ना ही राशन कार्ड में उस लड़की का नाम एंटर होगा। तो ये एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बोल सकते हैं जिसको हम विवाह प्रमाण पत्र कहते हैं। और आप देखिए कि हर पंचायत में आपने कभी गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि विवाह का पंजीकरण जो है वो 21 दिन के भीतर करना बहुत ज़रूरी है और इसके पीछे बहुत सारे कानूनी रीज़न भी हैं। आप देखिए कई बार क्या होता है आपने पहले का समय और था तब हम औरतों को यही सिखाया जाता था कि आपका पति है आपका परिवार है अब आप मायके के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है और आप उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि ये सच्चाई भी थी पहले की औरतें जो थी वो या तो माता पिता की कमाई पे निर्भर रहती थी या फिर अपने
0: ससुराल
1: में
0: मतलब पति के ऊपर।
1: और वहाँ पे क्या होता था कि जब वो एक उसको अबला इसीलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो निर्भर थी और जब वो अपने पति के या परिवार के ऊपर निर्भर होती थी तो कई मामलों में ऐसा देखने को आता था कि अगर वो बेटा पैदा नहीं कर पा रही है तो पति की दूसरी शादी करवा दी जाती थी। अगर उसका ससुराल में कोई ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं है, माना लड़की का बर्ताव अच्छा नहीं है या पति के साथ उसकी नहीं बनती है कुछ भी है तब भी उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती थी। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे बहुपत्नी की प्रथा है। हमारे हिमाचल में भी एक ऐसा कुनवा है जहाँ पे बहुपति प्रथा भी है। कुछ एक इन चीजों से बचने के लिए देखिए जिस औरत के होते हुए पति जो है वो दूसरी शादी करना गैर कानूनी है और जब पहली पत्नी अगर कागजों में दर्ज किया गया है उसका नाम विवाह का पंजीकरण हुआ है तो फिर पति या पत्नी जो भी हैं वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं और ये सब उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक भावनात्मक सुरक्षा ही नहीं है सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी उन लोगों को ले आता है जो अपने विवाह का पंजीकरण करवाते हैं।
0: जी दोस्तों, तो आपने जाना कि पंजीकरण आखिर होता क्या है और विवाह का पंजीकरण करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक महिला के लिए जो है अपने जब वो निर्भर होती है तो उन्हें भी तो कोई ना कोई अधिकार या आगे जीने के लिए कोई ना कोई सहारा तो उन्हें चाहिए होता है। तो इसलिए ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम नहीं जानते या तो नजरअंदाज की इतना जरूरी तो है नहीं, शादी हो गई बात खत्म, तो इतनी सी बात समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, वैसे भी ना हम लोग जो भी हमारा धर्म है, चाहे हम मुहम्मदन है, हम सिख है या ईसाई है,
0: जी
1: हर एक धर्म में शादी की एक मान्यता है। विवाह को बहुत ही पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में मिलकर आपसी सूझबूझ के साथ अपने एक सामंजस्य बिठा के अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के हिस्सेदार बनते हैं। तो हर एक धर्म में विवाह, हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है या कुछ ऐसे लोग भी हमारे समाज में है जो कहते हैं कि जब विवाह को हमने धार्मिक आस्था के अनुरूप किया है तो विवाह तो मान्य ही है, तो इसको पंजीकृत करवाने की क्या जरूरत है, और इस वजह से वो शादी को दर्ज नहीं करवा पाते हैं और बाद में दिक्कतें आती हैं। मानो परिवार में जब तक आपका विवाह पंजीकृत नहीं हो पाता है तब तक मान्यता नहीं मिलेगी उस लड़की या उस लड़के को। कई बार जरूरी नहीं लड़की के साथ ही ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी कई तरह के मुद्दे इस तरह के आ जाते हैं। और आजकल के समय में तो ऐसा वक्त चेंज हुआ है कि आप देखिए कोई भी कुछ भी कर ले रहा है। हम लोग दूसरी शादी करने से गुरेज नहीं करते हैं, पहली पत्नी के होते हुए हम दूसरी पत्नी ले आते हैं, या एक पति के होते हुए अक्सर सुनने को आता है आजकल बच्चों की माएं दूसरी शादी कर ले रही हैं पहले पत्नी पति के होते हुए। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जब हमारा विवाह पंजीकृत होगा तो जो कानूनी अधिकार हैं उनका सही से उपयोग होगा और जो भी दिक्कतें हमारे परिवार में या हमारी सोसाइटी में हमें फेस करने को मिलती हैं उनसे हम बच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और फिलहाल आप सभी को बातों से बचने का मन कर रहा है, मैं बिल्कुल आपका इशारा समझ चुकी हूँ दोस्तों। तो अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे सी म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान, और आज हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं कि आखिर विवाह का पंजीकरण करवाना क्यों जरूरी है, क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है आज के समय में इस चीज को। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं रूमा जी से और कुछ खास बातें। तो रूमा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आखिर पंजीकरण क्यों जरूरी है और किस तरह से ये करवाना चाहिए, लेकिन अक्सर हमारे समाज में हम देखते हैं कि कोई भी काम हम तभी करते हैं जिसमें हमारा कोई बेनिफिट हो, है ना। नहीं तो ऐसे सोचे कि कौन ही अपना समय बर्बाद करे, हमें मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या है, होगी शादी, बस हो गई बात खत्म, शादी करनी है समाज को दिखाने के लिए वो कर ली। तो अब ये हमारे दोस्तों को बताइए कि आखिर पंजीकरण करवाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हमारे लिए होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है पंजीकरण के बाद का।
1: देखो रुचिका जी, विवाह के पंजीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं फायदे ही फायदे हैं मैं तो ये कहूंगी
0: इनसे।
1: मैंने पहले ही कहा कि आपका जब तक पंजीकरण नहीं होता है तो आपका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं होता है। जब आप एक परिवार के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको कानूनी मान्यता मिल जाती है, उस परिवार के जितने भी अधिकार हैं, जो भी लीगल राइट्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, चाहे वो आपका उस परिवार में संपत्ति से संबंधित अधिकार हो या किसी भी प्रकार का जो भी आपका उस परिवार के साथ संबंध है, वहाँ पे जो भी कानूनी अधिकार हैं वो आपको सभी मिलते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है विवाह का, पंजीकरण का, कि आपका जो पार्टनर है वो अगर आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे खुश नहीं है, तो वो दूसरी शादी के लिए तब तक नहीं जा सकता है जब तक पहला विवाह निरस्त नहीं होता है। और ज्यादातर जैसे आजकल का चलन हो गया है आपका लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूसरी मैरिज का, अक्सर जैसा हमारे समाज में ऐसा होता है, अगर बेटा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर दो, अगर अच्छी तरह से पति पत्नी में या सास ससुर के साथ लड़की की नहीं बन रही है, इसको घर से निकाल दो, इसको अपने आप से दूर कर दो। तो ये इन सब चीजों से हमें आजादी मिल जाती है कि कोई भी हमारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता है। आपको कोई भी, अगर आपको घर से आपके ससुराल वाले निकाल भी देते हैं, तो एक विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको कानूनी तौर पर मान्यता दिला रहा है और आपके हक को सुरक्षित रखने के लिए भी वो बहुत ही कारगर है। इसके साथ साथ रुचिका, हर एक चीज में आजकल विवाह सर्टिफिकेट की जो है वो बहुत जरूरत रहती है। अगर आपने विदेश में जाना है, विदेश जाने के इच्छुक हैं आप, तो आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में जब बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपका मैरिटल नॉन मैरिटल स्टेटस जाना जाता है, पूछा जाता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको वहाँ पे अपने विवाह का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना पड़ता है। और इसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा शादी का, तो आपका जो पासपोर्ट है वो बनेगा ही नहीं। दूसरा, अगर किसी वजह से परिवार में कोई समस्या आ जाती है, पति या पत्नी में से दोनों में से कोई इसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है या कुछ भी ऐसा चीज हो जाती है, तो वहाँ पे भी विवाह पंजीकरण एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से जो उस व्यक्ति के मिलने वाले अधिकार हैं जो पत्नी को मिलते हैं, क्योंकि अगर विवाह पंजीकृत नहीं है और यहाँ दो या तीन पत्नियां किसी व्यक्ति की हैं, तो वो सभी के सभी दावेदार हो जाएंगे जी। लेकिन हमारे जो कानून ये कहता है कि जो पहली शादी है अगर वो निरस्त नहीं हुई है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वही मान्य है। अगर आपने LIC लेनी है तो वहाँ पर भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, LIC की ही बात नहीं मैं कर रही हूँ, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जाते हैं
0: जी,
1: तो वहाँ पे भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी वही मुद्दा आ जाता है, पत्नी एक या दो है या पति एक या दो है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है
0: आज के समय में, तो कुछ भी पॉसिबल है।
1: तो ऐसे में अगर किसी का साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो भी क्लेम है वो कानूनी जो रूप से वैध जो होगा उसी को मिलेगा। और एक चीज और है कि जो शादी का कानूनी रूप से वैध होती है ना, उस शादी में जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनको भी वैध माना जाता है। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार में शादी करता है या हमारे परिवार के किसी सदस्य की शादी होती है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम जो इसके लिए लिमिट दी गई है कि 21 दिन के भीतर अपने नजदीकी पंजीकरण अधिकारी के पास जाके हमें विवाह को जो है वो पंजीकृत करवा लेना चाहिए, तो वो जरूर हमें करना चाहिए।
0: जी रोमा जी, तो अभी आपने जिक्र किया कि 21 दिन के भीतर, वैसे ही हमें बताया जाता है, आपने कहा कि पंचायत घरों में लिखा भी होता है
1: जी,
0: तो ऐसा क्यों है 21 दिन, मतलब उससे ज्यादा अगर गलती से कोई भूल जाए या टाइम निकल जाए तो उनके लिए कोई प्रावधान है या किस तरह से?
1: देखिए, हर एक स्थिति अलग होती है। अगर आप 21 दिन के भीतर आप पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं विवाह का, तो आपके पास आगे 90 दिन होते हैं, आप 90 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं। और अगर 90 दिन के भीतर भी अगर आप विवाह का पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो भी पंचायत अधिकारी आप विवाह को पंजीकृत कर लेते हैं, उसमें आपको रीजंस देने पड़ते हैं कि किस वजह से ये सब डिले हुआ। और ज्यादातर क्या होता है, गाँव के लोग अनपढ़ होते हैं, लोगों को पता भी नहीं है कानूनी गतिविधियों के बारे में, उनको जानकारी भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो 21 दिन के भीतर अगर पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं तो आगे उनका विवाह पंजीकृत नहीं होगा। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, दोनों ही पंचायतों से ये लिखा हुआ होगा कि इनकी शादी हो चुकी है, तो उस वेस पे 1 साल के भीतर शादी जो है वो पंजीकृत हो जाती है। लेकिन इतना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके देखा है कि कई बार शादी के 3 या 4 दिन के बाद ही पति पत्नी के बीच जो है वो
0: लड़ाई
1: तालमेल बिल्कुल तालमेल नहीं बन पाता है और झगड़े जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, और एक पत्नी के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो वाकई ही उसके साथ उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो अपनी शादी को प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, और वो है विवाह का पंजीकरण सर्टिफिकेट। और ये आपको जितनी जल्दी हो सके विवाह के बाद आपको अपने विवाह को पंजीकरण करवा लेना चाहिए। और इसका जरूरी नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपका मैटर कोर्ट में ही पहुंच जाएगा, हर एक गतिविधि के लिए आपको विवाह का पंजीकरण जरूरी है। अभी मेरे सामने एक मुद्दा आया था, हमारे कोई दोस्त हैं जिनकी शादी 2015 में हुई थी, लेकिन उनको विदेश जाना था तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करी थी और उन्होंने विवाह पंजीकृत नहीं करवाया था। और जब वो पासपोर्ट ऑफिस में गए पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन ये लगा कि मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। अब देखिए, 2015 की शादी और हम 25 में आपको उसको आके रजिस्टर करवाएंगे, तो पंचायत सेक्रेटरी है, जो पंचायत अधिकारी है, जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रार है, वो उसको पंजीकृत नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनको विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन देना पड़ा, और उसमें भारी भरकम खर्च भी होता है। आप देखिए, जब आप जाएंगे सभी जगह आपको उसमें नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से, वो पुलिस में भी जाएगा, गांव में भी जाएगा, लड़की के मायके में भी जाएगा, और ये प्रोसेस बहुत लंबी चलती है। वैसे तो 45 दिन के भीतर उसका पंजीकरण हो जाता है कोर्ट के माध्यम से भी, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरी पार्टी तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, उसमें कई बार पब्लिकेशन भी करवानी पड़ती है, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही भारी भरकम खर्चा जो है वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो हम इन चीजों से बचने के लिए क्यों ना एक जो समय की अवधि सरकार ने नियत कर रखी है, उसी के भीतर हम विवाह को पंजीकृत करवा लें।
0: बिल्कुल सही कहा रुमा जी, समय रहते अगर चीजें हैंडल हो जाएं तो फिर बाद में पछताने का क्या ही फायदा है, और क्यों ही पछताना है, क्योंकि समय रहते अगर हम कर लेंगे ये सारे काम, इसीलिए तो जानकारियां हम अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो इस काम में या किसी भी काम में डिले जो है वो ना करें और लापरवाही ना बरते।
1: वैसे भी देखिए, कहते हैं काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब,
1: तो हमें कल तक ये काम
0: जिंदगी का आजकल वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, अगले ही पल कौन साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता, या तो ये बोलिए कि रात को सो के सुबह का पता नहीं है।
1: इसलिए हमें जो काम आज अगर हो सकता है
0: जी,
1: तो हमें उसको कल पर टालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही परिवार के लिए बेनिफिट है उसका। जरूरी नहीं है कि हम हर एक पहलू को नकारात्मकता देख के ही चले, हमें सकारात्मकता को भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए जब तक विवाह पंजीकृत नहीं है आप कोई भी काम कानूनी तौर पे तो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ज्यादातर देखा मैंने, हमारे आर्मी वाले दो भाई हैं, तो उनकी शादियां हो जाती हैं तो वहां पे भी उनको मैरिटल स्टेटस देना पड़ता है, तो वो भी किसी वेस पे देते हैं, किसी और जॉब में है वहां पे भी देना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी अपने स्पाउस को वहां पे एंटर करवा के हम जो भी हमारे बेनिफिट हैं वो ले सकते हैं, पर कल को अगर किसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है तो जब तक ये सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा तो पारिवारिक पेंशन का लाभ भी उनको नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों, फायदों से भी दूर रह जाएंगे अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे या फिर नजरअंदाज करेंगे इन छोटी छोटी सी बातों को, तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े। तो बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई कि आखिर विवाह का पंजीकरण करवाना क्यों जरूरी है और क्या क्या इसके फायदे पंजीकरण करवा कर जो है हमें मिल सकते हैं। तो इस बातचीत के साथ मुझे लग रहा है कि अब समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो दोस्तों दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नई बातचीत के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृह मंत्री

उद्देश्य देश में डेंगू के रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू के रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू के रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आप

0: दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: श्रोतियों, रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत, मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनते हैं प्रोग्राम का एक होर सोहना जिहा पंजाबी गीत।
5: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
6: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
7: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
6: तरक्की?
7: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका है
6: तरक्की।
7: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
8: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
7: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
9: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
7: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
6: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
8: अब खुले में शौच नहीं।
10: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
11: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
12: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
11: किससे?
12: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंचन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

0: श्रोताओ रेडियो कंचन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।
1: तू हसदी बहुत सोहनी लगदी है गगी, ठीक करदा तेरे हासे तो जान वार दें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गाँव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच, नहीं
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
10: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
9: किससे?
10: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्ते नमस्कार, कानवी देशमिला 2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। रेडियो गुंजन धर्मशाला च मैं शशि कार्यक्रम लेकर ही हाजिर हुई हूँ। है माटी दी महक कने फ्रीक्वेंसी जड़ा से तुह तक जरूर पहुँचाई थी है 92.2 MHz पर। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते। इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तो हाँ तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर अहां शुरुआत करी थी है कने इसी शुरुआत करने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी होने न कने बाकी जिहड़ा गल्ला न से पहले एक गीत तो वहाँ तक पहुँचाई दे या शुरुआत हाँ करी लेंदे न इस प्यारे दे गीत कन्ने फिर ही जड़ा गल्ला बात न से तो वहाँ तक करते न कन्ने आजकना जड़ा दिन ने तिसदी क्या खासियत है सभी जरूर तो वहाँ तक पहुँचानी है। तो जरूर शुरुआत हाँ करा दे इस प्यारे दे गीत कन्ने कन्ने तो वहाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते।

0: ఏ తుహ సారెందాపనా రేడియో గుంజన్ ధర్మశాలా తుహ సారి ఇస్ వక్త్ కార్యక్రమ సునా దేనా అప్నీ రేడియో తో శశి కన్నె ఇసి కన్నె తుహ సారి భీ ఇస్ కార్యక్రమ దే సఫర్ చ అహ కన్నె జుడి సక్దే కన్నె అహ కన్నె గల్ బాత్ చిడే సి జరూర్ కరి సక్దే तो श्रोताओ अज ने दिने की गल करिए 21 जुलाई 2026 की। तो ये दिन तो हाँ जरूर इंजॉय भी करा दे होने न कने अपने जेड़ा काम मन सभी करा दे होने न। इसी कने पहले श्रोता जेड़ा न सियाह कने जुड़ चुके हो न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक ठाक है। तो बोला
0: जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तुह कुथु दे रहने वाले न कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं जी तंगलोटिया दे रहने वाला कने रमेश मेरा नाम है
0: जी। रमेश जी तंगलोटिया दे रहने वाले न जी?
1: हाँ जी
0: जी। तो क्या हाल चाल है जी तंगलोटी वाले दे? क्या काम कार छेड़िया जी?
1: कुछ नहीं काम कार आंद्र आंद्र बड़े बरखा तो लगी हो ना ओंडी जा चुकी है जगह
0: जी। अच्छा बरखा लगी थी पर उन बरखा थोड़ी सुकी ही है ना जी?
1: हाँ जी बरखा जैसा लगी है ता
0: जी जी। वैसे भी तीन दिन जड़े से थोड़ा अलर्ट ही दस है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी।
1: चलो ठीक दिया हो जाए तो पहला तो नहीं हो रही चलो हूँ ठीक हो जाए बरखा
0: जी जी। तो तुम्हारी साइड वही थे उरे लगाई करी बेल लेके था कुछ आ, कुछ
1: बिल्कुल फ्री हो गई है। दवा पानी ही अपन दवाई पाने टाइम नहीं दिया था
0: जी जी। उन ता हर काम दवाई दे सहारे पर ही चली पिया ना जी।
1: वहाँ उन कोई पतले बटना नहीं मता था बोला था तो दवा पा तो फलाना काम करा बस
0: जी जी।
1: जैसा पहले नंदाइयाँ कर दे किम्बा कर दे थे
0: जी
1: उनके बाद नाम सही नहीं मिली है
0: जी जी। से जिड़ा नंदाइयाँ ना टीमा ना से बिल्कुल खत्म है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी। ता रमेश जी आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके
1: गाना सुनाई दिया जी। कांगड़े दा टिल्ला माता अकबर के रिया
0: जी। कांगड़े दा टिल्ला सुनना तो हाँ
1: कांगड़े टिल्ला माता अकबर के रिया
0: जी जी। न्यू वर्जन च सुनना है कि पुराना ही सुनना है तो हाँ?
1: नवा सुनाई दिया
0: जी जी जरूर। ये जेड़ा न्यू वर्जन च ऐसे तो हाँ तक पहुँचा दे ना जी गीत
1: जी।
0: जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा।
1: ठीक है जी।
0: जी अगले जेड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने भी कर दे ना गल बात। हेलो
2: नमस्कार शशि जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
2: जी?
0: जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के जी?
2: आहा रामनगर ते बोला
0: जी। अच्छा रामनगर ते बोला दे जी। अपना नाम भी जरूर दसी दे जी।
2: मांगो राम जी।
0: जी मांगो जी आज तुहां क्या काम कार लगाया क्रिया की चल रहा तुहंदा अजकना दिन?
2: आज कोई काम नहीं है मैडम बरखा लगी थी हुन जरा थोड़ी चुकी है।
0: जी जी
2: काम क्या करना भी बिस्तरे की है ना
0: जी। बरखा च वैसे भी कोई भी काम जड़े से नहीं होंदा ना जी।
2: हां जी
0: जी जी। चलो थोड़ा देर रेस्ट करना भी जरूरी है।
2: हां जी
0: जी जी। तो कदिया लगा था तुम जो एक कार्यक्रम
2: बड़ा बढ़िया लग रहा मैडम
0: जी? तो रोज ही सुन दे इस कार्यक्रम जो तू हाँ
2: पहले तो रोज ही सुन दे पर हूँ मतलब दिन बाद लय सुनना
0: जी थोड़ा बिजी हो ही थे कि टाइम नहीं मिल रहा था जी। तो आज तू हाँ गुंदिया गीत सुनना पसंद करके
2: आज माता भरमाणी दा सुन लेना
0: जी। माता भरमाणी दा भजन सुनना है तो हाँ ना जी?
2: हाँ जी
0: जी जरूर है भजन तो हाँ तक पहुँचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
2: धन्यवाद जी
0: जी। तो श्रोताओ तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देन कन्ने जेड़ा अगली फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देन। तुह सारे भी सब फरमाइशा चू इंजॉय करा।

0: बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तोहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारा दिया भजन। इस भजन की फरमाइश अहां तक पहुंची हुए खनियारा ते कने तीना दा नाव है बतन जी तो जरूर तीना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तोहा सारिया भी इंजॉय की कने इसी कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो शशि मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन।
1: ठीक ठाक मैडम जी, ठीक ठाक न
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, तुहां ठीक ठाक है न?
1: ठीक मैडम जी
0: जी, तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा?
1: मैडम जी नरवाणे ते, राकेश कुमार
0: जी। राकेश जी नरवाणे वाले आंदे क्या हाल चाल है जी?
1: बस हाल चाल ठीक है मैडम जी, वर्खा होदियां बड़ियां
0: जी, बरखा चाहिए
1: बढ़िया एडवाइस करे कि थोड़ा सेफ्टी रखा थोड़ा नाले खोले जाना तो दिखी सुनी जा
0: जी,
1: अखे रखे कोई नौना पे याद है कोई कुछ कोई याद है, थोड़ा बच्चे भी घरे आले गला दे बच्चे भी देखो रुक टॉप करा
0: जी जी,
1: पता नहीं लगा कल पानी आई गया था कने क्या हो गया मैडम जी।
0: जी जी वैसे भी बरसात का मौसम है ना जी।
1: हां जी मैडम जी
0: जी, कई बार होंदा कि उपली साइड गल करिए ता
1: हां जी मैडम जी नौना पे याद है पता नहीं कल दी उपली दे फ्लड आई है ना
0: जी जी।
1: हाँ जी बच्चे मनते अजकल तो जी पता था
0: जी, चलो मनते तो नहीं पर
1: थोड़ा प्रिकॉशन होना चाहिए मैडम जी, बच्चे है ना वहाँ पड़ी
0: हुए जी जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, क्योंकि
1: और मैडम जी
0: जी
1: और मैडम जी ठीक ठाक?
0: हाँ जी ठीक ठाक है जी बिल्कुल जी, तो हाँ सुना बाकी घर सारी ठीक ठाक है ना?
1: सब ठीक ठाक मैडम जी, दो चार कैजुअलिटियां हुई आ रही है तो बड़े ही प्रॉब्लम है
0: जी। अच्छा
1: जी
0: जी,
1: तो मैंने आज टीवी लगाए रेडियो लगाए ने 8-9 दिन फिर मिले आज लगाते थे मैडम मैंने कर दे गल
0: जी। अच्छा अच्छा जी, चलो अच्छी गल है ना जी, रेडियो सुनना भी जरूरी है।
1: मैं तो मैडम सोचा लगी टीवी रेडियो
0: जी जी,
1: हां वो अलग बोलते भजन सुंदरकांड
0: जी। अच्छा प्यागति सुनना जी ऐसे तो हां शुरू करी
1: मैं समझा दे कर दा लू रेडियो बाद नहीं होना ना चालू के लगी रहना
0: रेडियो तो बाद
1: अपना काम कर देना दे मैडम जी। हां जी जी काम कर देना दे मैडम जी, अपना करना लग गया दिल
0: जी जी, दिल ही लगाने है ना जी।
1: हां जी सेवा निवृत्त ने मैडम जी, हुन रेडियो का दिल लगाना
0: जी जी, क्योंकि कई बार होता ना कि ज्यादा सोच विचार कर देना।
1: ना ना सोच विचार करनी नहीं मैडम जी, अपनी जिंदगी है ना पता नहीं कल क्या होना, आए जिंदगी हादसा खेला गला बोला खरा सब ने कुछ बंदा मत बोला खरा बोला अपन कल जिंदगी है कल कड़िए क्या होना
0: जी जी जी जरूर जी। तो आज तो हाँ गुंदिया गीत सुनना
1: मैडम, सुनना कनारा ने चिट्टे पर जेड़ा बने ना गीत बड़ा बढ़िया गीत है मैडम जी
0: जी, चिट्टे ने
1: चिट्टे बड़ा सावधान चले ना आजकल जो पता था आजकल
0: जी जी, चलो सही है ना कि चिट्टे दिया वजह ने या जेड़ा नशा
1: बड़ा मैडम जी बड़ा भारी अल्लाह रोला तो हाँ बोलना बड़ा भारी रोज सुना दे फेसबुक से दिखा भी इतने पकड़ो इतने दिखा बच्चे क्या क्या कने क्या मैडम जी देखा घरे आले भी ना
0: जी
1: बच्चे थोड़े रोक टोक करा कि बच्चा मार कताए गया कताए गया रोक टोक करा ना मैडम जी,
0: जी
1: फिर पकड़ो यार देखा उम्र क्या बच्चे 20 साल 21 साल कुड़िया दिखा मैडम जी
0: जी जी,
1: हाँ दिखा लग क्या कमाने धंधे रखी लिए मेरी जिंदगी खराब हो गई थोड़ी चला अपने दूगे बगैने बच्चे भी मैडम जी कितने मारा दिखा ला
0: जी जी, सही है ना कि अपनी जिंदगी भी यहाँ।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी, अपने बच्चे मैडम जी दुनिया दुनिया के बच्चे है ना मैडम जी,
0: फैमिली जो भी नुकसान।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम जी, अपने बच्चे थी तो बच्चे सब तक माँ बड़े की पाले कितने मैडम जी
0: जी जी, तो जरूर
1: देखा की जी मजबूरियां पाले अंदर की जड़ी सापा ना कहने फिर दे दिया आता फिर याद मैडम जी, फिर मरी याद के डोल पौंदा बच्चा ना मैडम जी
0: जी जरूर जी बड़ी हाँ। सही
1: पर सारे शिक्षा देंगे थोड़ा बच्चे पर टोका कहना दे दीजिए दूर रहने बहुत बढ़िया मैडम जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी, तो जरूर तो हंदी चेड़ा फरमाइश जैसे
1: बहुत मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मैडम जी,
0: तो हंदा भी धन्यवाद जी। तो शो तो तुम सारे जो ही लेकर चल देन अगली फरमाइश दी और सुन दे नि सा प्यारी दिया फरमाइश जो तुम सारे भी एंजॉय करा
2: कदे जी तू होवे

0: माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिने कन्ने करते न गल बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी राकेश जी, क्या हाल चाल है जी तुहांदे?
1: बड़ा वधिया जी, तुहां घणा बड़े दिन बाद फोन मिलाया मैं तुहानू।
0: जी बड़े दिन बाद रेडियो गुंजन धर्मशाला च तुहां याद कीता।
1: जी तुहां बड़ा वधिया प्रोग्राम है तुहाड़ा जी।
0: जी अच्छा, रोज ही सुनदे?
1: जी हां जी, वधिया ना।
0: जी जी
1: जी, बात यही करे तुहाड़ा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है।
0: जी थैंक यू जी।
1: आज जी एक गाना सुनना, बड़ा बड़ी प्यारा गाना है
0: जी, कुंडिया।
1: ए कौन गोरा चली छनान?
0: जी गोरा,
1: हां गोरा करना चली छनान, तकी तकी रहता बड़ा बड़ी गाना है।
0: जी जी जरूर, ए फरमाइश तो तक पहुंचा दी जी।
1: पूरा सुना नहीं है पर जी, जी पूरा सुना नहीं
0: हूं। जी पूरा ही सुनांगे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: जी
0: जी, ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तशो तो गल बात हां करा दे थे थोड़ी देर स्वास्थ्य जो लेकर, क्योंकि सेहत जड़े से हां वास्ते हमेशा जरूरी है। हर दिन हाँ अपनी जिंदगी च भाग दौड़ करते हैं या अपनी जिंदगी जो भाग दौड़ भरा बनाई लेंदे हैं, पर कुछ ना कुछ अपनी सेहत जो नज़रअंदाज करना जड़े से शुरू हो जाते हैं। तो यही हाँ, अगर सेहत जो नज़रअंदाज करते हैं छोटी दे बीमारी जड़े से बड़ा रूप धारण कर लेंदी है। अगर हाँ सही तरीके ने चेकअप नहीं करवाते हैं या सही तरीके ने अहाँ दवाई नहीं लेंदे हैं, तो कुछ ना कुछ तिदा नुकसान जड़े से अहाँ जो दिखने जो मिलता है। अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी करते न गल बात। हेलो,
2: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
2: जी? मैम जी बढ़िया जी।
0: जी तुहां कुत्थों दे रहने वाले न, कन्ने तुहां दा नां की है जी?
2: जी अहीं वो चंबे दे।
0: जी चंबे ते?
2: हां जी
0: जी, नां भी जरूर दसी दिया जी अपना।
2: जी मैं नां तरबीर जी।
0: जी ता आज तुहां कुंदिया गीत जिहड़े से सुनना पसंद करगे?
2: जी गाना सुना, साए साए मत कर रावी।
0: जी साए साए मत कर रावी।
2: जी
0: जरूर, एक गीत तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
2: धन्यवाद
0: जी। तशो तो अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां सारे जो ही लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर। सुनते निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो फिर वापिस आते न तुहां तक गलबात लेकरी।

0: विनिंग एंड लूज।
1: कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे सुनया ये प्यारा देया गीत प्यारी दे फरमाइश। तो जरूर ये फरमाइश तो हाँ सारे जो पसंद भी आई होनी है कने यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप दे माध्यम ने कने जरूर जेड़ा अगले जेड़ा श्रोता है न तिना कने कर देन गल बात। हेलो
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: ठीक मैडम जी। तुहां
1: जी यहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु दे रहने वाले न कने तुहांदा ना के है जी?
2: मैं धर्मशाला दे बोला दा
1: जी। धर्मशाला ते बोला दे
2: विजय कुमार
1: जी। विजय जी क्या काम कार छेड़े तुहां? कदिया मौसम है धर्मशाला दा?
2: मौसम बरखा टी है मैडम जी। हां
1: जी बरखा लगी पई है फिरी ते?
2: हाँ जी
1: जी। तो जरूर बरसात दे मौसम च ख्याल भी रखना है क्योंकि कई बार होंदा ना कि हाँ थोड़ी देर लापरवाही दी वजह ने खुद जो नुकसान जड़े से पहुंचाई लेंदे ना जी।
2: जी जी मैडम जी।
1: जी तो विजय जी आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
2: मैडम जी सुनाई दे नींबू के बाग दे।
1: जी नींबू के बाग है जी। जरूर है कि तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहां दा।
2: ठीक मैडम
1: जी। तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो जरूर इसी गलबात कन्ने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे न।

तशु तो तुम सारे सुनिया प्यारा दया गीत प्यारी दई फरमाइश कने इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची होवे सिद्धबाड़ी ते कने तिना दा नाम है इंदू जी तो जरूर इंदू जी तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंगी गीत संगीत की कने गीत संगीत जड़े से अहाँ जो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी का जड़ा सफर है से थोड़ा अहाँ का जड़ा जिंदगी का सफर है से और भी बेहतर बनी आंदा है। तशो तो छोटी दी कहानी है से जरूर तुह तक पहुँचानी है।

एक जेड़ा गांव था तिथु जेड़े से दो बीज पियो थे कने से बीज जेड़ा ने से आपस ची ही पियो थे यानी कि बखे बखे ही पियो थे। एक बीज जेड़े से बोलता है कि मैं जेड़े से मिट्टी दे अंदर नहीं जाना है कने दुआ जेड़े से दुआ जेड़ा बीज है से बोलता कि नहीं मैं तो मिट्टी दे अंदर जाना है कने मिट्टी दे अंदर जाई करी जेड़े से चाहे से धूप है चाहे से बारिश है चाहे कुछ भी ऐसे है मैं सब कुछ झेलना है कने दुआ जेड़ा बीज है से बोलता कि नहीं मैं मिट्टी दे अंदर जेड़े से नहीं जाना है तिथु जेड़े से अंधेरा होंदा खतरा होंदा कने से जेड़े से मिट्टी दे अंदर जेड़े से बीज नहीं जाता है कने दुआ जेड़ा बीज है से जरूर मिट्टी दे अंदर चली आंदा है कने से तिहा धूप जो भी झेलता है या तिसी अंधेरे जो भी झेलता है या जेड़ा तिस दे जितनिया भी चुनौतियां आंदियां ने तिना सारिया चुनौतियां जो झेलता है कने जेड़ा पहला बीज होंदा से जेड़ा बीज है से मिट्टी दे बाहर ही पिया होंदा कने तिथु जेड़े से चिड़िया आंदी कने तिस बीजे जो जेड़े से चुकी करी यानी कि खाई आंदी तिस बीजे जो कने जेड़ा दुआ बीज है तहां जो से बीज क्या सीख दे करी जानदा से बीज अहाँ जो ये सीख दे करी जानदा कि अहाँ अगर सफलता कर देन या सफलता दी ओर बढ़ देन या बिना डरे हो अहाँ अपनी सफलता दी ओर अगे बढ़ देन तो जरूर अहाँ सफल होंदे न कने अगर अहाँ तिस डरते डरी आंदे न तो अहाँ तिथु तक ही सीमित जड़े से रह आंदे न तो जरूर जीवन है जीवन च अगर अहाँ विकास सुधार ताई करी सकदे जालू अहाँ तिना डरा जो कम कर देन या तिना उतार चढ़ावन तिना ते अगे बढ़ते न क्योंकि जिंदगी है जिंदगी च हर दिन अहाँ वास्ते कोई ना कोई उतार चढ़ाव जेड़ा से चलिया रहा पर अहाँ किस प्रकार तिना उतार चढ़ावान का जेड़ा सामना है से करते न से अहाँ पर निर्भर करता है। पर एक गल भी है कि अच्छाई करने चलना अहाँ वास्ते सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर अहाँ पॉजिटिव सोच अपने अंदर रखते न हमेशा अच्छा सोचते न ताई अहाँ ईमानदारिया ने अपना जेड़ा काम है उस जो करी पाते न कने सफलता दी ओर बढ़ते न। बेशक इंसान ये भी सोची करी चलता है कि अहाँ बुरा करा दे न तो कुछ जो पता चला दे पर जेड़ा भगवान है सब कुछ दिखा दा कर्मा दा जेड़ा चक्कर है ना से सब कुछ हेतु ही है तो अच्छा करके सभी अहाँ वास्ते है बुरा करके सैतीदा फल जेड़े से अहाँ जो जरूर मिली आंदा है। तो श्रोताओं इसी कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तुहां सारे जो ही अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है तो जरूर तुहां सारे इस प्यारी दी फरमाइशा जो प्यारी दे गीते जो इंजॉय करा।

दर्शो तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत फरमाइश गीत फरमाइश यहाँ पहुँचाई है नरवाने विनती नांदा ना वे राकेश जी। तो ज़रूर इसी कन्ने हाँ थोड़ा दिया फिर ते अग्गे बढ़ती ना क्योंकि समय जड़ा से बिल्कुल थोड़ा है 3 मिनट हाँ कार्यक्रम च जड़ा बचिया ना तो ज़रूर अग्गे बढ़ते ना अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते ना।

मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने ताशो तो इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है सेहत हुई संपन्न होंदे तो हाँ सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जुदिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपना

0: मिलेगी। साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योति।

0: पर HIV कभी न दूं।
1: अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के ICTC में सलाह और HIV टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गाँव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल मोटरसाइकिल, दिखा भाई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूंगी आज की बात तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, तीखा आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
4: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
8: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
9: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
8: किससे?
9: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुके जनाब तुंदे सभी रहे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच। क्या हाल चाल ना तुंदे? उम्मीद करना खरे बुनेन और खुश बुनेन। ता श्रोतो बहुत सी जानकारी हिन असूल है जो असू तुसो गे शेयर करनी ने साझा करनी। बहरहाल आज ता बरखे के असो करखन करखा पूरे बहगा रहे गया श्रोतो। सो धर्मशाला में जो बरखा लग रही थी और काफ़ी तेज तरार बरखा के असो इनते धर्मशाला में भोए है ते लगो गर्दा थो कि बरसाला के असो लगो है। और जहने बरखा बुने तथों बाद जो इनते धोलाधार पहाड़ हिन सामने जो घुस देने कितने ही प्यारे और कितने ही हरे भरे के ना सो लगते हैं श्रोतो ना। इंया इरीगरी दिल वाकई में खुश हो चुकेगा हा। ता जानी लेंदेन इस समय धर्मशाला रा क्या मौसम हा? अगर हम गल करूँ श्रोतों ता 18 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के जो धर्मशाला रा मौसम हा श्रोतों है ना। और वाकई में ये जो सामने धोलाधार पहाड़ हैं ये वाकई में कमाल लगू कर देने समय बिल्कुल हरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही लगता है। ये लगता है ना कि धोई करेगी ऐसा हो रहा कितने प्यारे दे। ना मेरी गल करूँ श्रोतों जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बल देन तो 75% हा। तैया धर्मशाला रा मौसम इस वक्त रा। ता चलिए जी आगाज़ ज़रूर कर लेंदे ना है सब कार्यक्रम रा। और ये फरमाइश है करमचंद जी री जो नेर नोडरानी मंदिर रे निवासी हैं त्यारी फरमाइश माँ के आसवैया है गीत होंदे हैं। और तथों बाद फिर अंदे इंदे जितने भी श्रोतागण ने त्यारी जो भी फरमाइश बोली सो है ज़रूर पूरी करने की कोशिश किए श्रोतों से ज़रूर कर ले। बनी रही है वीडियो गुंजन री गूंज सोफी।

শোধ এফ এম ব্যান্ড 91.2 তো মেগা হার্টস পর ভেরি গুঞ্জন তো টিউন কর রহা और हम सचिन कपूर तुसो के बिल्कुल हाजिर हा तुंदे वीडियो सेट में बिल्कुल हाजिर हा मौजूद हा कार्यक्रम में इन अपना कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है अगमो के फिर सभी हुने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा जी की तो सब जान दिन भली भांति श्रोता इस कार्यक्रम मंच के ना सुन दे श्रोता दूर दराज थों की आसो जुड़ते हैं रेडियो गुंजन मंच और इस कार्यक्रम मंच है ना तैयार पहले कॉल उसको चले आया और इतिसो के श्रोतों आज सुके अपने ही धर्मशाला रे या ट्रैक रे बारे में गल कर रहे हैं ट्रैक यानी कि थतारना ट्रैक जी बिल्कुल छोतो और असु को जो कि तस ग्रांथों किया सो बहुत सारी कॉल्स इन दी हिंद छोतों

0: रहा थाऊं जड़ी थाऊं ततार ना ट्रैक किया सो शुरू बुंदा हा यानी कि खड़ो तथों तबर हाल इंद श्रोतागण असोगी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोलन देन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
1: और
0: जनाब कौन
1: ठीक
0: बोलन
1: ठाक
0: देन।
1: है?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बोला तो ठीक ठाक।
1: बस ठीक ठाक है। बरखा लग रही।
0: हाँ बरखा लग रही। अच्छा कौन बोलू कर देन और कड़ियों बोलन देन।
1: और ज्ञान चंद्र उर्फ छात्री हूँ।
0: थात्री हूँ।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: अच्छा जी ज्ञानचंद जी कर करे लुगरेन।
1: बस बेहूरे बेल है।
0: अच्छा तो
1: हाँ जी।
0: कामकार।
1: कामकार अली है रखा है। बरसात फिर रही है।
0: हाँ बरसाती कामकार बड़ा घाट बंदा है ना जी।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: ये बड़ी दिक्कत रहती है बरसाती।
1: बरसात है काम घट ही होंगे जरा ड्रैन वाला पास डर रहता गाने का ना
0: अच्छा।
1: ये ड्रैन वाला होंगे ना इधर गाने डर रहता अजकल।
0: आजकल डर रहा। हाँ जी। हाँ जी।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: और कहने क्या पूछ गए छे भी पता ना लगता है
1: कोई पता ना
0: ना जी।
1: यही जगह ठीक है छोड़ दिया थे।
0: अच्छा ज्ञानचंद जी एक क्या मांजरा बोला ज्ञानचंद जी कि पहले की ज्ञानचंद जी सो जगह भी खरी बुंदी थी पक्की जगह बुंदी थी है ना।
1: हाँ जी। हाँ
0: और
1: जी।
0: अबे जगह जगह भी थोड़ी कच्ची ने क्या चक्कर लाए। हाँ
1: चक्कर जी ग्रां ग्रां जो रोड बने तो
0: जी।
1: मशीन लगी रही है सब जगह कच्ची खरी थी पूरी ये जगह कच्ची पेगी ना वे तो ये खन खनाई होंगी है तो
0: हाँ जी।
1: जगह जगह रोड बने तो सो साहब है तो हुए कच्ची जगह ये पहाड़ इनके
0: अच्छा।
1: सामने सोची आ गए लौड़ा पसाड़ा जगह ठंडी नहीं कभी भी अरे वो बंदे लौड़ा बदल फटी को चंबे बदल फटी को
0: जी।
1: पता ना क्या कारण कोई मुझे समझ नहीं थी कप्पर सारी चल
0: हाँ
1: आए भी लौड़ा पसाड़ा गंदे ही है ना
0: जी।
1: लौड़ा
0: हाँ जी।
1: गंदे ही है
0: अच्छा
1: एड़ी बरसात होंगी ना सुई दे तरह चली जाए तरह बरसात ना होंगी आ
0: जी।
1: तरह सुखा रहना वधी आ
0: अच्छा
1: हांडी फिरी भी इंते जगह बजा चीन ने नौई।
0: नोई जगह मुड़ी गंदे थे ने जो।
1: हाँ जी। हाँ जी। लाहौर वगैरह मनाली वगैरह रहना चली जाना
0: अच्छा तो
1: हाँ
0: ये तो है
1: तरह
0: पैदल ही
1: ये
0: ट्रैक कर देती है यार कि गड्डी गुड्डी गंदे थी है।
1: नहीं पस्सा बंदे ही है। हाँ
0: अच्छा बस गंदे थी है।
1: जी। हाँ जी।
0: अच्छा
1: यार मौसम खरे होंगे ही तो बरखा बुरखा कोई ना तो ये निम्बल होंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास धुप्पा होंगी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: आवे तो यार चंबे गाने बरसाती आए थे कम तो यार लौड़ा ही खाने कम कोई ना तो बड़ा डर फिर रस्ते में
0: बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अबे सो हम बल्लू तो करता अबे तो सो कुछ चीज़ा ना रही ज्ञानचंद जी चीज़ा बदली गई कुछ पहला
1: पहला वाला साहब ही आए ना भाई पहला
0: वाला साहब भी आए ना। बड़ी अच्छी गल।
1: वाला बिल्कुल ही साहब रहे तो
0: पहले इंदे सियाने के थी सो सच्चे भी थी है ना
1: हाँ जी। हाँ जी। हाँ
0: सात
1: जी।
0: थो ना पहले चक्कर ते या
1: तिया बढ़िया बाल बच्चे टब्बर तिया बढ़िया पालते हैं जिया
0: हाँ एदा पे।
1: मर्जी बोलता जिया मर्जी बोलता खाई लेंदे ही सो आवे तो माण आवे तो यहाँ
0: काम
1: आवे तो कम नहीं खराब
0: खराब है बिल्कुल काम खराब है।
1: हाँ
0: चलिए
1: जी तिया
0: ज्ञानचंद जी कौन। जी।
1: की तू कमरे में टब्बरी पाल ले बने बढ़िया रे उरे
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: पैरा बढ़िया मलाप वो बढ़िया रंधे ना सो राली में रंधे ही रहे अबे तीज आई ना था
0: हाँ अबे सो प्यार नहीं आ सो रिस्पेक्ट नहीं आ सियाने री है ना मोटे री सो रिस्पेक्ट नहीं आ।
1: आई ना ही आई ना
0: बड़ी चीज़ा बंदी ना अबे।
1: हाँ पहला बड़ा साहब ही आई ना साहब ही बदली गया है।
0: जी ज्ञानचंद जी बिल्कुल सही बोलो कर
1: हाँ
0: दें तो है
1: जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ
0: जी। ज्ञानचंद जी कौन
1: जी।
0: देने गीत सुनना पसंद कर ले।
1: आई देखो क्या ना ये जंगला डरा
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले तो सुई गीत है।
1: ठीक है धन्यवाद जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। नमस्ते।
1: जी
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हिंदा श्रोताओं बिल्कुल धर्मशाला रहा बड़ा ही खूबसूरत है ट्रैक है श्रोताओं। वैसे तो है मतलब ज़्यादातर मुझे लगता कि त्रिउन ट्रैक में किया सो ज़्यादातर मनो गंदे, लेकिन इस ट्रैक में भी किया सो कुछ एक मनो किया सो जरूर गंदे। और धर्मशाला रे बड़े ही खूबसूरत है जगह हा, थतारना ठेरा ना हा शतो, और तू सब भी दसन जाना थतारना ट्रैक किया शतो। सो खड़ोता ग्रां थो किया, ग्रां खड़ोता थो किया सो है चलना शुरू करी दिन दे हिन, लगभग लगभग किया सो 4-5 घंटे रहा ये ट्रैक हा। और बिल्कुल और अभी भी दसी नो ये तो चलो अपन अपने मनु दसी था मैं कि खड़ोता है ना ये धर्मशाला में आके ग्रां खड़ोता तड़ी थो किया थतारना ट्रैक शुरू बंदा, और कम से कम 4 या 5 घंटे रहा ये ट्रैक किया सोरेंदा हा। सो तो इस ट्रैक के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी के अनुसार तो सुत ग्रह है पहुँचल है बने रहे तो सब रेडी गुंजन रिगुन सोगे आइए श्रोताओं लेकर चल दे तू सभी जो अब है जंगला ढलियारा गीतारी किनारी बने रहा जुड़ी रहा वीडियो गुंजन सोगे।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.9 दुई मेगा हर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर दें जनाब सचिन कपूर सो के गादा कार्यक्रम चल रहा तुंदे रेडियो सेट में हाना जी करे लगो कर दे ठीक और फेसबुक रे माध्यम तो भी है कुछ कुछ क्लिप्स के न सो पंदे रेंदे और कुछ एक जानकारी के अंसो भी तुसो की शेयर कर दे रेंदे शो तो अक और जानकारी किया सो निकल कर आया और ये जानकारी थोड़ी करके गंभीर है घररा पानी किया सो खराब है शो तो सप्लाई थोड़ा काम किया काम खराब है बिल्कुल धर्मशाला में पी लिया वे बढ़ते मामले वे बिच किए सो स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग भी पेयजल जांच रिपोर्ट में अंतर सामने किया सो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी लिया थो प्रभावित बच्चे वे घर थो जहने अह पानी वे नमूने पीने योग्य किए सो हेरे तनिन मतलब कि स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग किया सो गल करू कर दा हा श्रोतों की घर पानी किया सो खराब है सप्लाई किया सो सेफ नहीं है धर्मशाला में पी लिया रे बिच पानी वे जांच पर सवाल और दोनों विभाग री रिपोर्ट किया सो अलग अलग पानी वे नमूने री रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है श्रोतों और बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग री टीम में प्रभावित क्षेत्र में लगातार सर्वे किया सो करू कर दे हा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के सूदे बल्लो हा कि मनु थो कि केवल पानी की सो उबाली करी पीन और स्वच्छ पानी किया सो पीन है ना साफ सुथरा पानी किए सो पीन और साफ सुथरा पानी का विशेष ध्यान किया सो रखना चलिए श्रोताओं अगली जानकारी होगी मिल देन रूबरू बुंदन तंदे बिच

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और इन द अगले श्रोता आस हो गए कनेक्टेड बच गया है। नमस्ते जी।
1: हेलो हीरो, फोन मत चलाता रहा कर नहीं तो आज बकरी तेरे कुत्ते ने खा लेना ना, तेरे साथ कुत्ते थे।
0: आइए श्रोताओं, फिलहाल करू करते हैं लाइव कार्यक्रम जो और इन श्रोतागण के न सो असुओगी बिल्कुल जुड़ी चुकू रहे। फिलहाल श्रोताओं बिल्कुल पानी की सो उबाली करी भी है, जो कि बरसाला लग रहा था पानी की सो उबाली करी जरूर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोतों, है ना कि जो कि पी लिए रहे ज़्यादा मामले के ना सो बड़ू करते हैं। इसी तो कि श्रोतों है ट्रैक रही गल करूँ कर देती है थतारना ट्रैक रही, जो कि बिल्कुल 360 डिग्री मंच है और 2600 मीटर की ऊंचाई मंच है और कैंपिंग रह के ऐसो अद्भुत नज़ारा है श्रोतों, है ना। तक मुख्य जरूर गान तो है थतारना ट्रैक जो जरूर गान जरूर गान जरूर गान। बहरहाल कार्यक्रम जो आगू लेकर चलते हैं और तू सभी जो कुछ और जानकारी होगी जरूर रूबरू कर बंदे हैं ले आइए श्रोतो। कार्यक्रम मंच थोड़ी करी आगू फेरी बढ़ दहिन और इस प्यारे दे गीत तो होगी क्या सो तुसु सभी श्रोता जो किया सो रूबरू करवंदे हैं।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो हेटी उनकुर रहा और आऊँ तो जो कि तुम अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हा कॉल कर सकते हैं जनाब 7 0 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर कर लूँ हाँ 7 0 8 8 7 0 9 8 पर आइए श्रोता हूँ कार्यक्रम जो है बढ़ते हैं और अगली जानकारी तू होगी रूबरू करते हैं स्मार्ट सिटी में अंडरग्राउंड डस्टबिन रहे बाहर के असो फेंकू कर देना वे मनु कूड़ा शोतों कचरा है ना। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में नगर निगम द्वारा पिछले कुछ वर्ष हथों के असो घर घर गिचे करे कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था के असो लागू करे थे शोतों ताकि मनु के असो कचरा खुले में के असो ना फेंकना और ना फेंकने की आवश्यकता पिया शहर जो साफ सुथरा भी रखना स्वच्छ भी रखना इतों बाद भी किया सो शहर रे कई हिस्से में कि अज भी किया सोतों सो मनो सड़क रे किनारे नाला रे किनारे खड्डा रे किनारे है ना कचरा फेंको कर दें इतों ना केवल शहर रे स्वच्छता प्रभावित बच्चों कर दे है बल्कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर भी किया सो प्रतिकूल प्रभाव प्यो करता है। ताज़ा मामला गमरू क्षेत्र रहा सोतों गमरू क्षेत्र में मेला मैदान रे समीप किया सो सामने आ जड़ी सड़क किनारे स्थापित भूमिगत डस्टबिन रे डस्टबिन लग रहा और मनु के असो तड़ी थैले में भरी भरी भरी भरी करके सो कूड़ा फेंको कर दे हैं है ना। और आसपास डस्टबिन रे अखे पखे के न सो छड़ी गच्छू कर दे इन श्रोतों तथा सिर्फ गमरूरा मामला सो इन सामने आसो है तुसो दसीता ठेरे अलावा रामनगर में भी और रामनगर सो अन्य स्थानों पर भी किया सो इस प्रकार री चीज़ा भुच्छू कर दी यानी कि डस्टबिन बाहर किया सो कूड़ा फेंके गच्छू कर दे हिन शो तो है ना। और इतों तू पता कि ना केवल मतलब व्यवस्था तो खराब बच्चू कर दी है लेकिन तुंदा स्वास्थ्य भी खराब बच्चू करता और तस कूड़े जो कि असो अन्य जानवर भी के असो फैलाव करते हैं और सो भी खाई करके असो बीमार बच्चू करते हैं ता तेरा समाधान किया समाधान है या तो है डस्टबिन अंदर पा या तो डस्टबिन अंदर ना पाओ कर ना डस्टबिन भरे के छूरा या ना प्यो करता डस्टबिन अंदर था समाधान दुआ ये है कि भाई कूड़े वे गड्ढे के सो इंदे भोने है ना तथी अंदर के सो जरूर पाए दिन कूड़ा शोतों इस प्रकार होगी जानकारी रा सिलसिला के सो चले रहना शोतों बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी जुड़ रहे हैं बहरहाल कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर कर लो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो होगी सांझा कर ही सकते हैं श्रोताओं लेकिन यह गल विशेष ध्यान रहे कि जानकारी की सांझा करने लायक जरूर हुआ इन अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी
0: जी नमस्ते कौन बोल रहे और कड़ी थो बोल रहे
1: ਆਉਂ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਠਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ
0: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ
1: ਬੜੀਆ ਜੀ ਬੜੀਆ
0: ਕਰ ਕਰੇ ਲਗੁਰਨ
1: ਬਸ ਤਾਂ ਬਰ ਖਰੀ ਵਜਾ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ
0: ਬਰਸਾਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਚ ਗੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਚਲੋ ਬਰਖਾ ਬੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਜੀ
1: ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਾਬ
0: ਬੜੀ
1: ਬਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਾ ਬੋਣੇ
0: ਫਸਲ ਨਾ ਬੋਣੇ खुरी ना बखा
1: बस बस
0: घर रहते हैं बुंदा ना कोई बुना नहीं कमा हुआ था खुरी बखा
1: बेले बुना ना
0: बेले बुना ना
1: हाँ जी
0: चलिए जी, तां कुन दिन गीत सुनना पसंद कर ले जनाब? तो है
1: ए नुआले का गीत कोई भी,
0: नुआले रा गीत कोई भी।
1: कोई भी। हाँ जी
0: चलिए, तुसु जरूर सुन लिया है।
1: ठीक है,
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही है। हाई अशोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और उन्हें तो सभी जो ये गीत बने रे आरचे सचिन कपूर सो के

শোধ এফএম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ টিউন গুরু আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি কা পাগে না সো বিলকুল লাইভ চল রহি হিন তন্দে রেডিও সেট মা আর বিলকুল আজ পেনি ফিরি না সু পেনি আর হাসি খেলি করি জিন্দগি কি সো ব্যতীত করনে হ্যাঁ এ বাকে মাই শোধ ए वाके माही गलता हाँ भाई हंसी खेली करी जिंदगी की असो व्यतीत करने का मजा भी इंदा शो तो आनंद भी इंदा हा तो बहरहाल फरमाइश भी है कि एक नुआला के असो होना चाहते हैं तो है जरूर एक लाइव नुआला के असो हुनंदे हिन तुसु वेड़ी गुंजन मा बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

श्रोता एफएम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुन्जन ट्यून कर रहा और रहा हूँ सचिन कपूर जनाब भैया कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम में चलता थोड़ी करी और हगो श्रोतो छत्तीसगढ़ का समय बांध भी रही 43 पेयजल योजना के अनसो बांध भी रही श्रोतो प्रदेश में बरखा थों के असो गड्डी रह पहिए के अनसो थामे गया नो जगह जगह पहाड़ दरकने थों किया खिसकड़े थों के लैंडस्लाइड मुने थों किया सो दिक्कत ज़्यादा इच्छू कर दी आवाज़ में राज्य में हिमाचल प्रदेश में श्रोताओं तुसो दसना चाहता कि बरखा के कारण के सो छत्तीस सड़क बंद प्यूरी हीन जबकि चंबा जिला में दो उपमंडल उपमंडल में उपमंडल भी 43 पेयजल योजना भी प्रभावित बुझक चूरी हीन तेरे अलावा श्रोताओं बाजार उपमंडल में चौर और स्पीति में ट्रांसफॉर्म किया सो ठप प्यू रहा श्रोताओं स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर री औरतों के सोमवार जो 5 बजे तक रिपोर्ट में ये जानकारी साझा किया कि मंगलवार जो राज्य वे 5 जिला में रेड अलर्ट बुना है श्रोताओं स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक गल करिए तो बेगा राज्य भर में कुल 50 सड़क पर किया सो वाहन रे आवाजाही बरखा के कारण किया बरखा के कारण बछूरे भूस्खलन और अन्य कारणों वे चलते किया सो प्रभावित हुई थी सड़क जो बहाली रे कार्य करते के सो संबंधित विभाग के संध्या 5 बजे तक सड़क 5 बजे तक किया सो खुलने बल्लो हा 13 सड़क के अनुसो खुली गानी 13 सड़क मंच के सो यातायात बहाल कर देना है श्रोताओं जबकि शेष 36 सड़क जो किया सो खोलने में थोड़ा करे समय लगना है लेकिन काम के सो चल रहा है श्रोताओं जिला चंबा में 10 कांगड़ा में 4 कुल्लू में 7 लाहौल स्पीति में 8 मंडी में 11 शिमला में 4 और ऊना जिला में 2 सड़क के न सो बंद पे रहीन बहरहाल ये जानकारी थी जो तो है तुसु तक पहुंचाई इस सोगी श्रोताओं अगली जानकारी भी तू होगी शेयर करी इंदिर प्रदेश में आज थों के श्रोताओं सो आज तू है पता कि लगातार बरखा बोए और काफ़ी झमाझम बरखा के सो घरे लग रहे थे श्रोताओं और अब झमाझम बरखा के सो 25 जुलाई तक के सो असर ठेरा रहना हा और भूस्खलन रहा इनकी लैंडस्लाइड रहा खतरा भी किया सो बढ़ना हा प्रदेश में मानसून आगमों के फिरे की सो रुंद रूप लेव करता सो है सब हेरू करते हैं श्रोतों और रुंद रूप हेरने लेने की तैयारी मंच भी है मौसम विभाग शिमला वे अनुसार अगर हम गल करूँ तो 25 जुलाई तक तीन वालों की पूरे प्रदेश में भारी थो बहुत भारी बरखा की है सो कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बरखा भी चेतावनी की है सो जारी करी है विभाग के अनुसार गल करिए श्रोतों बरखरा दौर के सो पूरा हफ्ता के सो रहना हा और इसी सो के श्रोतों भूस्खलन अचानक बढ़ सकता है बाढ़ सड़क बंद भूना और जनजीवन प्रभावित भूना ये असु पता है और ये आशंका भी हा कि इस प्रकार होगी चीज़ें भूनीहीन मौसम विभाग शिमला रे अनुसार गल करिए श्रोताओं का आस्थों के सो कई जिला में बहुत भारी थों अत्यधिक भारी बरखा होने की संभावना है 22 जुलाई जो इनकी दुतकनी गल करिए 22 जुलाई जो भी सो प्रदेश है अधिकांश हिस्से में के सो भारी थों बहुत भारी बरखा रद और के सो जारी रहना जबकि 23, 24 और 25 जुलाई जो भी किया सो अलग अलग स्थानों पर सेम सिचुएशन रहने भारी बरखा की संभावना किया सो रहने हाशतों विभाग के सो विशेष रूप थों मंडी कुल्लू चंबा कांगड़ा सिरमौर शिमला सोलन हमीरपुर ऊना और बिलासपुर जिला वे सतर्क रहने भी किया सो सलाह दी इन सभी जिला वाले वे जितने भी मन इन सतर्क रहने भी किया सो सलाह दी है और यदि मां मंडी चंबा कांगड़ा कुल्लू और सिरमौर में किया श्रोतों सो अब हो सकता कि भारी बरखा भुआ श्रोतों तब ऐसा जी कि बखूबी जानते कि भारी बरखा मंच के असो असूया न करना यानी कि असू किया सो नदी नाला किनारी न गाना अपने नालों खोलू किनारी न गाना जड़ी जगह बड़ी स्लिपरी है इस किनारी न गाना इस किनारी अपना बैठी बूटी पास गए सोतों सो न गाना इन गलों विशेष ध्यान किया सो रखना हाँ
जरूर रखा शो तो हूँ सचिन कपूर ले लेने तो सुतो इजाजत अस दे रे मुस्कुरा दे रे और माँ बाप री सेवा जरूर करा हर कसी मदद किया सो अपनी औरतों जरूर करा नमस्ते धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, तीका है
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूँगी आज की बात तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों सुबह से मुँह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, गीत सुहाने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले मौसम की जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम सबसे पहले मौसम की ही जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं, और उसके बाद अन्य जानकारियों का पिटारा जो है वो खुलता रहता है। तो इस समय की मैं अगर बात करूँ श्रोताओं, तो आज तापमान जो है वो थोड़ा सा ठंडक जो है वो महसूस ज़रूर हो रही है श्रोताओं, क्योंकि सुबह से है काफ़ी बारिश जो है वो हो रही थी। तो इस समय अगर बात की जाए श्रोताओं, तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम तापमान जो है वो रहेगा श्रोताओं, है ना जी। और अगर मैं बात करूँ श्रोताओं, इस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो हुई है आज पूरे दिन में, और अभी भी कई कई जगहों पर धर्मशाला की कुछ एक स्थानों पर जो है वो बारिश हो रही है श्रोताओं, है ना जी। 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो दक्षिणी हवाएं जो है वो चल भी रही हैं, और सूर्यास्त का समय मैं बताऊं तो 7:29 जो है वो सूर्यास्त होगा श्रोताओं। नमी की बात की जाए तो हवा में नमी का स्तर जो है वो लगभग इस समय जो है वो 90% के आसपास है श्रोताओं। तो ये है धर्मशाला के मौसम की जानकारी।

श्रोतो एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी रेडियो जो कि सचिन कपूर। अब बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, श्रोतो आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर आ मेरे दिल में यूं ही रहना। जी बिल्कुल, राजा हिंदुस्तानी मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोतो। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये बेहतरीन सा गीत आप सभी ने सुना वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतो प्रदेश में जो है वो आज आपने देख ही लिया कि धर्मशाला में किस तरह से जो है वो बारिश हुई। श्रोतो अब लग रहा है कि हफ्ता भर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि हफ्ता भर जो है इसी तरह झमाझम बारिश रहेगी, यानी कि 25 जुलाई तक तो लगभग जो है वो इसी प्रकार की बारिश रहने वाली है। असर कुछ इसी प्रकार का रहेगा और भूस्खलन बाढ़ का खतरा जो है वो इन दिनों में अब 25-26 तारीख तक बढ़ जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, पूरी जानकारी आप तक शेयर करता हूँ, आपसे साझा करता हूँ। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से जो है वो रौंद रूप दिखाने की तैयारी में है। श्रोतो मौसम विभाग शिमला के अनुसार अगर बात की जाए तो 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। श्रोतो विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो आज से जो है वो बारिश हमने देख ही ली है श्रोतो, है ना, और साथ ही साथ पूरे सप्ताह जो है वो बारिश रहेगी जिससे भूस्खलन अचानक बाढ़ सड़क बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार 21 जुलाई को कई ज़िलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की जो है वो संभावना है श्रोतो, यानी कि आज जो है हमने देखा 21 जुलाई है आज और आज हमने देखा श्रोतों की किस प्रकार की बारिश जो है वो सुबह के समय धर्मशाला में हुई है श्रोतों। इसी के साथ बताना चाहते हैं 22 जुलाई यानी कि कल की बात करें तो 22 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 23, 24 और 25 जुलाई को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने विशेष रूप से मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर ज़िलों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। यहाँ के लोगों के लिए जो है वो सतर्क रहने की सलाह दी है श्रोतो। इनमें मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में 20 काफ़ी ज़्यादा जो है वो हवाएं भी चल सकती हैं श्रोतो और लैंडस्लाइड भी हो सकता है, लैंडस्लाइड होने की भी जो है वो संभावना है, तो और भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो हमारी भी अपील है ये और हमारे साथ साथ प्रशासन भी हमेशा से अपील करता आ रहा है कि लोगों से जो है वो ख़राब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें श्रोतो, है ना, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह का पालन करना तथा मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहने की अपील जो है वो हम आपसे करते हैं श्रोतो। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में तेज़ हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो आप सभी हमारे रेडियो गुंजन के श्रोताओं से थोड़ी सी हमारी ओर से ये एक गुजारिश है कि नदी नालों की साइड ना जाएं और ना ही जहां पर आपको लगता है कि लैंडस्लाइड हो सकती है उन एरिया में भी जो है वो ना जाएं श्रोताओं। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, कार्यक्रम चलता रहेगा, बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने मन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

शो तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना वेणुगुंजन धर्मशाला में हकियों के चरों से। इनके जो बीच में लफ्ज़ थे ना शो, तो जो वर्ड थे वो वाकई में ही बड़े कमाल थे, वाह कमाल थे मैं कहना चाहूँगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हेमलता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने अपने वीडियो सेट पर वेणुगुंजन धर्मशाला में सुना शो। तो आइए इसी के साथ लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को कुछ अगली जानकारी की और। श्रोताओं, धर्मशाला पालमपुर सड़क किनारे से फुटपाथ गायब। श्रोताओं, स्मार्ट सिटी के दावों के बीच पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता ही नहीं है, सड़क पर चलने को लोग मजबूर हो रहे हैं। श्रोताओं, धर्मशाला शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मुख्य सड़क पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ओर फुटपाथ विकसित किए गए हैं। हालांकि कई स्थानों पर इनकी निरंतरता और चौड़ाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं, फिर भी पैदल चलने वालों को एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास जो है वो किया गया है। श्रोताओं, इसके ठीक विपरीत डाकघर के समीप मुख्य सड़क से निकलने वाली धर्मशाला पालमपुर रोड, श्रोताओं, आज भी फुटपाथ की सुविधा उपलब्ध नहीं है उस जगह पर। परिणाम स्वरूप इस व्यस्त मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को सीधे सड़क पर वाहनों के बीच चलना पड़ता है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा जो है, श्रोताओं बताना चाहता हूँ, वो बना रहता है। ये सड़क डाकघर से कचहरी स्थित प्रशासनिक क्षेत्र तक मुख्य सड़क के साथ जो है वो गुजरती है श्रोताओं, और प्रतिदिन इस पर स्थानीय लोगों के अलावा सरकारी कार्यालयों में आने जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, बुजुर्ग तथा अन्य नागरिक आवाजाही जो है वो करते हैं। श्रोताओं, बावजूद इसके सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के लिए अलग से कोई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल श्रोताओं, सड़क अपेक्षाकृत होने और दोनों दिशाओं से जो है वो लगातार वाहन आने से श्रोताओं आवाजाही के कारण पैदल चलने वालों को कई बार जो है वो वाहनों के बेहद करीब होकर जो है वो गुजरना पड़ता है। श्रोताओं, बरसात के मौसम में स्थिति और भी जो है वो चिंतापूर्ण हो जाती है, चिंताजनक जो है वो हो जाती है। श्रोताओं, सड़क के किनारों पर घास और झाड़ियाँ उगाने से पैदल चलने के लिए उपलब्ध सीमित जगह भी जो है वो प्रभावित होती है। श्रोताओं, ऐसे में लोगों के पास सड़क के बीच या वाहनों के बेहद निकट चलने के अलावा कोई विकल्प जो है वो नहीं बचता है, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। श्रोताओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि नगर निगम धर्मशाला के वर्ष 2026-27 के बजट में इस मार्ग पर फुटपाथ पर बनाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया था, माफ़ करें, लेकिन क्या ये योजना धरातल पर उतर पाती है या नहीं, ये समय ही बताएगा कि उतर पाती है योजना या नहीं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा और गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेणुगुंजन।

तो ये है आप सभी का अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आप सभी का अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में श्रोताओं। तो आइए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, धर्मशाला में बारिश से टली पीजी काउंसलिंग। जी बिल्कुल श्रोताओं, डीसी के अवकाश आदेश के बाद धर्मशाला कॉलेज ने 22 को तय की है श्रोताओं नई तिथि, लेकिन फिलहाल तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है कि डीसी साहब का कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाए कि बारिश को देखते हुए, है ना, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मैसेज अभी तक है नहीं। तो प्रदेश सहित ज़िला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण श्रोताओं और भारी बारिश के मद्देनज़र उपायुक्त कांगड़ा द्वारा पिछले कल और आज जो है वो आज मंगलवार को अवकाश घोषित किए जाने के बाद राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला ने जो है श्रोताओं पीजी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। अब सभी पीजी कक्षाओं की काउंसलिंग जो है श्रोताओं वो कल यानी कि बुधवार 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली काउंसलिंग को विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थगित करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। श्रोताओं, कॉलेज ने सभी अभ्यर्थियों से नई तिथि पर समय पर महाविद्यालय परिसर में पहुंचने और अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने का आग्रह जो है वो किया है। उल्लेखनीय है कि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में इन दिनों जो है वो पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो जारी है। श्रोतों, है ना जी, एमकॉम, एमए, एमए इंग्लिश व एमए भूगोल सहित विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में मेरिट सूची जारी होने के बाद अब आगामी प्रवेश संबंधी प्रक्रियाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएंगी। श्रोतों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा जानकारियों का श्रोतों यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ, लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोतो, ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप जय सचिन कपूर के साथ आप सुन रहे हैं। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, बहुत खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना। श्रोतो, सलामी मूवी से लिया गया यह गीत था और कुमार शानू और आशा भोसले जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना। अब ये जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। श्रोतो, बड़ा बंगाल से स्ट्रेचर पर जो है वो भरमौर पहुंचाया मरीज, सोचिए आप, बड़ा बंगाल से जो है वो स्ट्रेचर पर भरमौर पहुंचाया मरीज। अब आप 13 सदस्य टीम ने दिया श्रोताओं जीवन दान। कई किलोमीटर रास्ता पैदल तय कर मरीज तक पहुंचे सदस्य और भरमौर से एम्बुलेंस में मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया मरीज। श्रोताओं, तो बताना चाहता हूँ, बड़ा बंगाल के इलाके में एक इलाका है, इलाके में जो है वो भेड़ बकरियां चराने गया भेड़ पालक अचानक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने उपायुक्त चंबा से संपर्क कर राहत एवं बचाव अभियान शुरू करवाया। जी बिल्कुल, पर्वतरोहण अनुदेशक पंकज मेहता की अगुवाई में जो है वो 13 सदस्य विशेष पर्वतरोहण दल ने सुरक्षित रेस्क्यू कर मरीज को जो है वो जीवन नव जीवन प्रदान किया। श्रोताओं, टीम ने दो दिन तक मरीज को स्ट्रक्चर पर उठाकर कई किलोमीटर का जोखिम भरा रास्ता पार कर जो है वो धराड़ी पहुंचाया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा को जिला आपदा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष एवं उपायुक्त के माध्यम से दूस्तर एवं दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना दी गई। मरीज की गंभीर स्थिति एवं प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध न होने से तत्काल जो है वो वैकल्पिक रेस्क्यू अभियान आरंभ किया गया। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और कुछ एक और जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं ना जनाब। तो श्रोतो अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय सचिन कपूर के साथ रेडियो गुंजन की गूंज के साथ। आइए जानकारी का पिटारा खोलते हैं। श्रोतो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज बताया कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की वर्षों पुरानी महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष लगातार टैक्सी ऑपरेटरों की मांग का मामला जो है वो उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया टैक्सी परमिट वाहनों की परिचालन अवधि को जो है वो 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। श्रोताओं, इस निर्णय से प्रदेश के हजारों टैक्सी संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्र भी सशक्त होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। वाहन संचालक परिचालन अवधि बढ़ाने की निरंतर मांग कर रहे थे, जिससे उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष जो है ये सवाल उठाया, ये मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष इस विषय को जो है वो प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया और वाहन संचालकों की व्यावहारिक कठिनाइयों से जो है वो अवगत कराया। श्रोतों, केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने के पश्चात प्रदेश सरकार ने भी जो है वो इसकी बिल्कुल आवश्यक आदेश जो है वो प्रदेश सरकार ने भी जारी कर दिए हैं। श्रोतों, तो जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा, बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने मन की, और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और 7 बज चुके हैं। श्रोतो वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कर उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी। महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जाँच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरुवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
0: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मीन्स ये जेन्यून है।
0: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

शुद्ध एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर। है ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को आगे बढ़ाते हैं और अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शुद्ध राज्य में जो है वो बारिश के कारण 36 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं जो, तो जबकि चंबा ज़िला के दो उपमंडलों की 43 पेयजल योजनाएं भी जो है वो प्रभावित हो गई हैं। इसके अलावा बंजार उपमंडल में 4 और स्पीति में जो है वो एक ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ा हुआ है। और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की ओर से जो है वो 5 बजे तक रिपोर्ट में ये जानकारी साझा की है कि राज्य के 5 जिलों में रेड अलर्ट रहेगा। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो राज्य भर में कुल 50 सड़कों पर जो है वो वाहन की आवाजाही बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अन्य कारणों के चलते प्रभावित हुई थी। सड़कों को बहाली के कार्य करते हुए संबंधित विभाग ने शाम तक जो है वो सड़कों के 13 सड़कों की यातायात के लिए जो है वो बहाल कर दिए, 13 सड़कें जो है वो खोल दी हैं जबकि शेष है

36 सड़कों को खोलने का काम जो है वो चला हुआ है। ज़िला चंबा में 10, कांगड़ा में 4, कुल्लू 7, लाहौल स्पीति मंडी 11, शिमला 4, ऊना ज़िला में 2 सड़कें जो हैं शोधों वो बंद पड़ी हैं। जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन की गूंज के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और गुड इवनिंग धर्मशाला को सुन रहे होंगे और गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ जुड़े होंगे। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम बहुत सारी जानकारियां जो है वो आपसे आपके साथ जो है वो साझा कर रहे हैं। तो इसी के बीच में मैं बताना चाहता हूँ, अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत धर्मशाला पुलिस ने एक युवक को 4.85 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। श्रोतो, मिली जानकारी के अनुसार धर्मशाला के साथ लगते सुकड़ क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान स्कूटी सवार मनोज कुमार निवासी मचलनी उप तहसील दरीणी जिला कांगड़ा के कब्जे से जो है वो 4.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। श्रोतो, पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी भी जो है वो कब्जे में ले ली है। श्रोतो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। श्रोतो, इसी तरह धीरे धीरे जानकारियां जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। श्रोताओं, जो एक्सीडेंट हुआ था रक्कड़ चौक के पास, टकराई थी बाइक्स, है ना, तो एक की मौत और दूसरा गंभीर। श्रोताओं, योल धर्मशाला मार्ग पर रक्कड़ चौक के समीप जो है वो रविवार रात करीब 8 बजे दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक युवक की जो है वो मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। श्रोतो, जानकारी के अनुसार नीलिन थापा निवासी पठानकोट रक्कड़ की ओर बाइक मोड़ रहे थे, इसी दौरान पीछे से आ रही रोहित कुमार निवासी कोटला की बाइक उनसे टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां रास्ते में नीलिन थापा ने दम तोड़ दिया। वहीं रोहित कुमार को गंभीर हालत में जो है वो ICU में भर्ती करवाया गया है। श्रोतो, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। श्रोतो, तो देखिए ये बात हम बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं और अपने युवाओं तक ये बात पहुंचाते हैं कि दो पहिया वाहन में तो स्पीड चलना ही नहीं है, चार पहिया वाहन में भी स्पीड नहीं चलना है। देखिए अब क्या फ़ायदा हुआ कि जान जो है वो चली गई। अब हम सभी जानते हैं कि दो पहिया वाहन में इतनी सुरक्षा तो नहीं होती है, है ना, वो बाइक ज़रा सी भी अगर स्किड कर जाती है तो हमें बहुत चोट जो है वो आ सकती है। और हम कंट्रोल में बाइक चलाएं, 30 से 40 की स्पीड में बाइक चलाएं तो हम भी सुरक्षित हैं और हम किसी और को भी जो है वो अन्य लोगों को भी जो है वो सुरक्षित रख रहे हैं। अगर हम इसी तरह से बाइक चलाएं या फिर अनबैलेंस हो जाए बाइक या पूरी रफ्तार के साथ जो है वो बाइक चलाएं तो फिर शतों इस तरह की दिक्कतें और कई घरों के इस तरह से जो है वो चिराग बुझ गए हैं। तो ये चिराग जो है वो बुझने नहीं चाहिए शतों, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी यंगस्टर से कि बाइक को इस तरह से ना दौड़ाएं। मात्र 30 से 40 की स्पीड या 40 से 50 की स्पीड में जो है वो अपनी बाइक को चलाएं और खुद भी खुश रहें, खुद भी बचे रहें और लोगों को भी खुश रखें। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं आप सभी। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शतोयोल में HRTC परिचालक से मारपीट मामला दर्ज हुआ। अपने ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, आपने देखी होगी। शो तो जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते योल क्षेत्र में HRTC के एक परिचालक से मारपीट, पैसे छीनने और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शो तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जो है श्रोताओं वो रघो निवासी अनीता देवी ने शिकायत दर्ज करवाई है। उनके पति HRTC में परिचालक हैं। शिकायत में बताया गया है कि 15 जुलाई को योल में भारी भीड़ के दौरान एक बेसहारा पशु को चोट लग गई थी। इसके बाद शीरा चौक धर्मशाला निवासी धीवज महाजन ने कथित रूप से उनके पति के साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनसे जबरन पैसे छीन लिए। आरोप है श्रोताओं कि आरोपी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उनकी छवि अभी जो है वो ख़राब की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर ASP कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और बिल्कुल शीला चौक धर्मशाला निवासी धीवज महाजन ने कथित रूप से जो है वो उनके पति के साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये मामला दर्ज हुआ है श्रोताओं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय RJ सचिन कपूर के साथ और वेड़ी गुंजन के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
4: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
8: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
9: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
8: किससे?
9: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ीगुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। तो श्रोतो 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ीगुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 15 वर्ष तक होगी ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहनों की परिचालन अवधि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अटकाने लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही सुक्खू सरकार, जनहित के भवनों पर तालाबंदी के लिए ठेकेदार मजबूर। राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं की शुरू। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों के दौरान 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और राज्य सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने व जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से उन्होंने आज शिमला में एक अनूठी पहल भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच की दूरी को खत्म करना है। इस पहल के तहत आज मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने संवाद किया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि संगठन ही सरकार का मुख्य आधार होता है और सभी से मिलने वाली प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर जनहित की भावी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा।
2: हर एक विधानसभा क्षेत्र से 50 से 60 कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे, जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर अगली योजनाओं को अमली जामा पहना। संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता बूथ प्रभारी जब हमारे साथ आकर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई बातें सामने आएगी। कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक दे, सरकार के कार्यक्रमों का जो धरातल पर क्या असर हो रहा है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, यही मेरी एक मंशा है।
1: मुख्यमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कौशल विकास व रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगारदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसर और उद्योगों की आवश्यकता तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों से प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों का मामला लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की परिचालन अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी करने के साथ साथ विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिसूचित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनहित के भवनों पर ठेकेदार की तालाबंदी प्रदेश सरकार की नाकामी को उजागर करती है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल पहले लोकार्पित भवन का उपयोग भी न होने की बात सामने आई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित आईटीआई भवन का भुगतान न होने पर ठेकेदार द्वारा भवन में ताला लगाने का मामला मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग ऐसी ही स्थिति है और जो कार्य पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए वे भी अटके पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार केवल अटकाने लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार ट्रेजरी व्हाट्सएप से चल रही है और अपनी सुविधा के अनुसार लोगों के भुगतान करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ बेहतर खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत शतरंज के खेल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला के ठियोग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 13 वर्ष से कम आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता के दौरान ये बात कही। इस प्रतियोगिता में 7 स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता, अनुशासन और तार्किक सोच को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने आज शिमला में बताया कि किसानों को राहत देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में 50% ब्याज माफी का निर्णय लिया गया है और जिन किसानों ने कृषि क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। संजय सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के 6,319 किसानों को इसका लाभ मिलेगा और ये योजना आज से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2016 तक के पुराने NPA खातों के लिए OTS के तहत 25% ब्याज छूट दी जाएगी।
3: 3 लाख तक का जो कृषि लोन होगा हम उसमें 50% की रियायत कृषकों को देंगे। लगभग इसमें 6300 जो अकाउंट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे। उसके अलावा हमने 2 और स्कीमें OTS वन टाइम सेटलमेंट जो है हमारे बैंक के जो कस्टोडियन हैं RCS उनकी अनुमति के चलते हम 2016 तक के जो केसेस हैं उसमें भी हम रियायत दे रहे हैं। आज से हमारे बैंक में आने वाले 6 महीनों के लिए हम 3 स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं जिस

0: का जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं वो फायदा लेंगे।
1: हमीरपुर शहर के पुराने छात्रा विद्यालय को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत को एजुकेशनल विद्यालय के रूप में पुनः बहाल किया गया है। स्थानीय व्यापारियों, विद्यार्थियों के अभिभावकों और शहरवासियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का आभार जताया है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने इस स्कूल को प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत को एजुकेशनल स्कूल के रूप में पुनः शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी थी। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया था और अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने हमीरपुर शहर के दोनों वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विलय को निरस्त करते हुए उन्हें अलग अलग संचालित करने के निर्देश दिए। नए आदेशों के अनुसार एक विद्यालय CBSE जबकि दूसरा HP बोर्ड के अंतर्गत संचालित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति सुविधाओं को लेकर संसद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुछ नशा उपचार सुविधाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की सक्रियता के चलते कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांगड़ा जिला में शाहपुर उपमंडल की बोघाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांव में भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण 6 मकान पूरी तरह बह गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करवाई जा रही है। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। उन्होंने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया।
2: मॉर्निंग से भारी बारिश पूरे जिले में चली और जो हमारे पास जो लॉस की रिपोर्ट आई है वो वैली से है, जहाँ के पेड़ू और पेड़ा दोनों में नुकसान घरों का हुआ है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। लोगों को परिवारों को करेंगे और जो हैं वो टेम्प्ररी शेल्टरों में वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
1: इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 15 वर्ष तक होगी ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहनों की परिचालन अवधि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अटकाने, लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही है सुक्खू सरकार, जनहित के भवनों पर तालाबंदी के लिए ठेकेदार मजबूर। राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं की शुरू। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों के दौरान 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। आप सभी खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए और प्रकृति का खास ख्याल जरूर रखिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अच्छा ना,
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं।

अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: सबको बता दूं।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी? काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना। तरक्की? देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका है
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
4: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
8: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
9: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
8: किससे?
9: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: सबको बता दूं।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी? काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टिका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।